0: The Night Shift. All your favorite music. Big 106.2. Beat of Bollywood.
1: तू मुझे चाहे न चाहे ये तेरे बस में तो है, और मैं तुझको न चाहूं ये मेरे बस में नहीं।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हुए।
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 0543091062. Big Unlimited, your request show from 10 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 93.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:05।
1: बॉलीवुड।

0: आगे पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया पिछले
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: The Big Breakfast brought to you by Zuleika Hospital. Your health matters. Get ready for a treasure hunt like no other. Indra Kumar, Bhushan Kumar and Ashok Takeria invite you to the biggest family entertainer of the year, Dhamaal 4. Starring Ajay Devgan, Ritesh Deshmukh, Arshad Varsi and Javed Jafri. Directed by Indra Kumar. Releasing on 10th July. Distributed by Al Nisar Cinema Film. Powered by Big 106.2.
3: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
4: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
5: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
4: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
5: मिस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
4: चलो चले अलराज।
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलराज, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
8: Good morning. It's the 7th of July, Tuesday. Kisway. Of course, it's been a nice and bright, sunny start to this Tuesday morning. 33 degrees Celsius right now. Temperature hai, humidity at 59%. Winds blowing at 16 kilometers per hour. Highs of 36 right now. Lows of 33 degrees Celsius.
1: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
9: Ek baar jo maine commitment kar di, uske baad to main apne aap ki bhi nahi sunta.
10: Oh yeah.
1: Ye hai Sid on the Big Breakfast, only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: कभी कभी ऐसा है किसी कॉन्वर्सेशन के साथ भी होता है कि पता नहीं चलता कि मेरी मंजिल है कहाँ।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: या फॉर एग्जांपल आई गॉट मुनीरा विद मी ऑन द फोन लाइन। गुड मॉर्निंग मुनीरा, हाउ यू डूइंग?
2: Good morning. I'm doing well. What about you?
0: I've spent the last 5 minutes explaining to Munira the whole story about Cristiano Ronaldo. Munira, kya problem ke? Are you like emotional? Are you a big Ronaldo fan or what's the scene?
2: No. By the way, I'm not his fan. Main uski biwi ki fan hoon. I really like the way she looks. And I swear, mujhe laga ki yaar wo bichari kaisi roti hogi, wo kaisi emotional hogi.
3: This is mujhe just golden, yaar abhi.
0: Kya baat hai yaar? Can you? I mean. 2 minute ke liye bhi you can't like shift your gaze from the BV to Ronaldo because he's one of the best footballers. It's zyada kuch nahi, he's just one of the best footballers ever to have played the game. And he,
2: I really know nothing about football. Honestly, जब आपने मुझे कहा retire हुआ है, मैंने बोला कि चलो यार, बीबी ने कहा है कि भाई आपसे नहीं हुआ हो जाएगा, आप बस ही कर दो, आप आगे बढ़ो।
0: इसमें भी अब आपको क्या लगता है कि रोनाल्डो अपनी बीवी की इतनी सुनता होगा या क्या है? What is his track record? What do you think?
2: नहीं, सुनता तो होगा भाई, सुनता तो होगा। एक बार मैंने ट्वीट पे वगैरह में देखा था कि भाई कहीं लिखा था कि my family is best वगैरह, डरता वरता तो होगा। लगता भी है,
0: समझदार तो लगता है, और समझदार आदमी बीवी से जरूर डरता है।
2: मतलब मोहब्बत के मारे डरता होगा। She is gorgeous, no doubt. Apart from that, like no one asked him कि भाई retire क्यों होना है, मतलब इतना age हुआ है, मतलब क्या खाता पीता है, he looks so young.
0: It's not about that. He's played a lot of World Cups for Portugal. I mean, and he thinks that it's the right time to not come back for the next World Cup. That's all he said. कि मतलब ये World Cup में वापस Portugal को represent नहीं कर पाऊँगा. I tried my best. I gave it my all. But and वो दिन चलेगा. You know, he's actually admitted कि there was a time when I did not ना सर दिखता था ना पैर. I used to take very rash decisions, but this is not one of those. मैंने मतलब सोच समझ के अपने family से, which of course to you is just his wife, उनको पूछ के सबको मैंने ये decision लिया है. So there you have it. I mean, it's a very calm, calculated call by Ronaldo.
2: Best of luck to him. लेकिन हमने जो शर्त लगाई थी, सब गए, पैसे गए, सब डूब गए.
0: मुनीरा को रोनाल्डो की बिल्कुल पड़ी नहीं है. All she cares about is the shirt that she has made. Please, can we have some details about what? I mean, you don't follow football, and despite that, you don't follow. So, फिर शर्त क्यों लगाई?
2: No. Basically, I'm a social media influencer. Oh. I have a lot of friends.
0: Okay.
2: So, हर कोई किसी को support कर रहा था, and I was like, why not? Georgina का husband है, चलो यही सही है. Orange color is my favorite. So, चलो पुर्तगाली बन जाते हैं. Why not? तो मतलब उम्मीद तो था हमें रोनाल्डो पे, तो कुछ ना कुछ करेगा वो. लेकिन मतलब इतना कुछ करेगा, उसके बाद चला भी जाएगा, इसका उम्मीद नहीं था हमें.
0: दिस इज मुझे पूरी एक लिस्ट अगर बनाई जाए कि कौन से वो चीजें हैं जिसके बेसिस पे आपको शर्त नहीं लगानी चाहिए, वो सारे आपने टैप बॉक्सेस टिक कर दिए कि प्लेयर पे नहीं उसकी जर्सी कलर पे, प्लेयर पे नहीं उसकी बीवी को देख के शर्त लगाओ. मुनीरा, ऑल द बेस्ट. आई डोंट थिंक योर मनी इज सिक्योर. आर यू मैरिड?
2: You need to give
0: your finance in the hands of a very capable, you know, asset manager or something like that. क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो उड़ जाएंगे पैसे, पता भी नहीं चलेगा.
2: सब गए, ऐसे ही रखे सब जाने वाले हैं.
0: चलो यार, थैंक यू. एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन एयर एंड टेलिंग अस एंड एजुकेटिंग माय लिसनर्स कि हाउ नॉट टू लगाओ अ शर्त. दैट इज मुनीरा. बट या, एनी रिएक्शंस फॉर द CR7 फेयरवेल? वी विल डेफिनेटली नॉट बी सीइंग रोनाल्डो इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप. दैट्स व्हाट ही हैज सेड. एंड पोर्चुगल आउट. Spain is still in the quarterfinals. This song's coming up in just a while. It's called Mascara from Main Wapas Aunga. This is The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.
1: Big 106.2.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 8:08।
1: Bollywood.

0: 96.2 The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो?
2: बोले तो मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा सज्जा देरा रसल खोर अलकूस गुसेस अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
3: Insurance Market.ae 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. InsuranceMarket.ae.
0: The Big Breakfast brought to you by Zuleika Hospital. Your health matters.
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
6: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
9: मॉर्निंग 8:16 मिनट ऑन दिस ट्यूसडे की सुबह। इट्स बीन अ नाइस सनी हॉट स्टार्ट टू दिस डे। 34 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी एट 50%, विंड्स ब्लोइंग एट 16 किलोमीटर पर आवर, हाइज ऑफ 36 राइट नाउ, लोज ऑफ 33 डिग्री सेल्सियस।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: 8:23 on the clock on this Tuesday. It is that time of the day jiska sabko intezaar rehta hai. It is time to play the spell battle.
1: Participate in the spell battle contest and win a family staycation. Big summer surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almired Ras Al Khaimah.
0: अजी ऐसा मौका बार बार नहीं आता. आपको इस मौके पे मारना है चौका. कैसे? टाइप करना है BSS फॉर बिग समर सरप्राइजेस. BSS स्पेस देकर अपना नाम एंड कीप व्हाट्सएपिंग दैट मैसेज. बहुत सारे अकलमंद हैं यहाँ पर जिनको इशारा ही काफी है, जो इशारा हम लोग 3.5 हफ्ते से कर रहे हैं. सो BSS स्पेस योर नेम कीप व्हाट्सएपिंग दैट टू 0543091062. नंबर एक बार फिर 0543091062. एंड व्हाट्सएप आप जब भेजेंगे, टू पीपल ऑन द फोन लाइन प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर स्पेल बैटल. जिसने ज्यादा स्पेलिंग सही सही बताई उतने ज्यादा चांसेस के देयर नेम विल गेट इनटू द ड्रॉ टू विन दिस अनमिसेबल स्टेकेशन. एंड कम समर्स आप जानते हैं स्टेकेशन इज ऑन टॉप ऑफ एवरीबॉडीज विश लिस्ट. सो एंड ऐसा वैसा स्टेकेशन नहीं है, रिक्सॉस अलमाइरिड इन रसल खेमा. प्लस ऑन द स्पॉट आज के आज दो मूवी टिकट्स प्लस F&B वाउचर भी अगर आप जीतना चाहते हैं. व्हाट्सएप कीजिए BSS स्पेस योर नेम and keep WhatsApping to 054-309-1062. The big summer surprises.
1: Big 106.2.

0: 105.2, the beat of Bollywood.
1: With Big Ticket this summer, every ticket could spin big.
2: A guaranteed 20 million dirham grand prize.
1: Our new big spin game could land you up to 1 million dirhams.
2: And 5 consolation prize winners of 100,000 dirham each.
1: Plus weekly cash e-draws all through the month.
2: Summer's hottest prizes await.
1: Buy now at bigticket.ae.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
4: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ncfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
5: When your skin feels good, confidence follows you everywhere. At Zuleika Hospital and Medical Center, our dermatology experts treat everything from acne, pigmentation and hair loss to skin allergies and aging concerns. Get healthier and clearer skin that looks and feels natural with our exclusive and affordable dermatology packages. Zuleika cares for your skin, for you. Call 600-52442 to book your appointment.
6: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
7: Wow, your hair color looks stunning.
8: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
7: Yeah, right.
8: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
7: Really?
8: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
7: I'm buying it right now.
8: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
9: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
10: The Big Mix. Miss kya gaya?
11: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते.
12: बिंदी बड़ा क्यूट नाम है और आप आवाज, मतलब इतनी क्यूट आवाज है आपकी, क्या करते हो बिंदी?
11: थैंक यू
12: बस हम यही करते रह जाते ना, एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं खीकी करके. इनकी पर्सनालिटी के बारे में क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है बताओ मुझे.
11: वो एक जो वो दिल में नहीं रखती है कुछ भी और बोल्ड सामने बोल देती है.
12: अच्छी बात है ना वो तो.
11: वो अच्छी लगती है बात.
12: एंड एक्टर भी एकदम A1, मतलब शी सच अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस है ना.
11: ब्रिलियंट एक्ट्रेस है पर इतनी मूवी नहीं आई.
12: इतना सोच सोच के जो बोला है कि यार अच्छा है जो बोल रही है सौरा, अग्री कर लेती हूँ चुपचाप.
11: Cheer
10: your midday mood Monday to Friday 1 to 5 PM. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
13: मॉर्निंग 8:29 ऑन द क्लॉक एंड लेट्स टेक अ लुक सबसे पहले एट द कैपिटल अबू धाबी. यहाँ पर आपको हल्का फुल्का ट्रैफिक मिलेगा मुसफा इंडस्ट्रियल पर एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स रब्दान. एवरीथिंग एल्स सीम्स टू बी क्वाइट ओके. हाँ, E20 पर भी हेडिंग टुवर्ड्स मजदार सिटी यू विल फाइंड 7 मिनट स्लो डाउन, सो बी केयरफुल आउट देयर. चलते हैं दुबई शारजा की ओर, हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा. यूजुअल सस्पेक्ट्स 311 E11 पर आपको मिलेगी 7 से 8 मिनट की देर. देन देयर इज S102 गेटिंग अ बिट बिजी शारजा रिंग रोड. अल्ताउन स्ट्रीट पर भी आपको ट्रैफिक मिलेगा, रोड कंस्ट्रक्शन का काम वहां पर चल रहा है अभी भी. देन देयर इज इंडस्ट्रियल एरिया 6 S112 पर हेडिंग ईस्ट एंड वेस्ट यू विल फाइंड 4 से 5 मिनट मिनिमम की देर. देन नस्मा सेंट्रल पार्क हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स अलवीर 611 पर इट्स गेटिंग बिजी. देन एज सून एज यू क्रॉस सिटी सेंटर मिर्दीप गोइंग टुवर्ड्स अलवरका 1 ऑन 311 ऑल्सो 3-4 मिनट की देर. एंड बिट ऑफ अनयूजुअल ट्रैफिक 66 पर फॉर दिस टाइम ऑफ द डे अलेन दुबई रोड जो है, दिस इज राइट आफ्टर अल जदाफ, यू विल फाइंड 3 to 4 मिनट डिले.
10: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
14: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
15: उड़ी बाबा।
16: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2, the beat of Bollywood. This football season, enjoy every single match live at the Huddle Bur Dubai. The Huddle Al Barsha and Brewhouse, the official fan zones of the World Cup. Expect special World Cup menus and happy hour deals with select beverages from 24 dirhams. If that doesn't make you scream,
1: goal!
0: They're broadcasting games past 3 a.m. For more information, follow at the Huddle UAE and at Brewhouse DXB on Instagram. Terms and conditions apply.
2: The Big Breakfast, brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
3: InsuranceMarket.ae. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Every policy is a promise kept. InsuranceMarket.ae.
4: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
2: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
5: गुड मॉर्निंग, इज 8:45 ऑन द क्लॉक एंड लेट्स टेक अ लुक. सबसे पहले एट 66, यहां पर रोज के मुकाबले काफी ज्यादा ट्रैफिक है दुबई अलेन रोड पर. एंड दिस इज राइट एज यू गेट आउट ऑफ अल जदाब, क्रीक एरिया से निकल के आपको ट्रैफिक मिलने वाला है गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन ऑफ E11. दिस इज द यूजुअल D71 राइट आउटसाइड दुबई मॉल. जबील एरिया में थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपको मिलेगा. 44 अलखेल रोड पर रसलखोर वाइल्ड लाइफ से निकल के बिजनेस बे की तरफ जाता हुआ 4 से 5 मिनट का डिले, अ बिट ऑफ कंजेशन ऑल्सो. 44 अलकूज फोर्थ से निकल के हेडिंग साउथ, देन शेख जायद रोड पर आज going south, going towards Sikkim, you'd find a bit of congestion as well. Be careful. 311 E11, 2R3 is heading south, going towards Dubai from Sharjah. 7 to 8 minutes ka delay. And then there's 611 ka usual 3-4 minute ka delay. And this is going south towards Alavir.
2: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
6: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो, सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ.
7: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं.
2: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 9:11, it is now time for one of the most exciting things that happens every day in the morning. It's time to play the Spell Battle.
1: Participate in the Spell Battle contest and win a family staycation. Big summer surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
0: Two contestants ready with us on the phone line. Sabse pehle, let's say good morning to Ankit. Ankit, kahan ho tum? Ankit?
2: Office
0: pahunchne wala. Office pahunchne wala, to phir aise kyun khuspusa ke baat kar rahe ho, Ankit?
2: क्योंकि ऑफिस पहुंचने वाला हूँ।
0: अच्छा, मतलब कॉरिडोर में पहुंच गए हो, दरवाजे के बाहर खड़े हुए हो, बस फिंगरप्रिंट की देरी है।
2: बस नहीं, फिंगरप्रिंट हो गया है क्योंकि यू नो
0: इन टाइम कर दिया। वेरी गुड अंकित, शाबाश। ये सारी कॉर्पोरेट हरकतों से हम सब वाकिफ हैं। लेट्स आस्क पुनीत कि वो कौन सी हरकत करते हैं सुबह सवेरे ऑफिस पहुंचते हैं। पुनीत, गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
0: अरे माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि नाइट शिफ्ट खत्म करके अभी उठे हो भाई, क्या सीन है पुनीत?
3: मैं भी कॉरिडोर में वेट कर रहा हूँ।
0: आपने कितने बजे आज इन किया? आपका फिंगरप्रिंट होता है या कार्ड होता है? पंच इन में क्या करते हो?
3: इन हो गया ऑलरेडी, हाफ एन आवर बैक हो चुका है।
0: हाफ एन आवर बैक। और रिपोर्टिंग टाइम क्या है आपका? आपको रूल्स बताता हूँ। मैं आपको वेकेशन, स्टेकेशन, छुट्टी से जुड़े कुछ वर्ड्स के स्पेलिंग्स पूछने वाला हूँ, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपको इन वर्ड्स का स्पेलिंग पता है, इफ यू वांट टू अटेम्प्ट इट, यू गॉट टू यूज योर नेम लाइक अ बजर, लेकिन अपने नाम के पहले आपको चिल्लाना है बिग, ओके? सो पुनीत, अगर आपको लगता है कि आपको जवाब पता है, आपको क्या चिल्लाना है?
3: बिग पुनीत।
0: बिग पुनीत, ऐसे बोलोगे तो समय निकल जाएगा भाई। थोड़ी चुस्ती फुर्ती दिखाओ। अंकित, आप क्या चिल्लाओगे?
2: बिग अंकित।
0: बिग अंकित, ये हुई ना बात। ऑलराइट, आर यू गाइस रेडी? एनी क्वेश्चंस?
3: No.
0: All right. Eyes on the prize. The prize is your name could go into the draw to win this wonderful staycation. Plus, on the spot, bhi kuch prizes hain. So, should I start your time then?
3: Yes.
0: The first word of the day is itinerary.
2: Yeah, big Ankit.
0: Big Ankit. Bolo Ankit.
2: I-T-I-N-E-R-Y.
0: Hala jawab. Puneet, would you want to take?
3: Big Puneet. Yes. I-T-I-N-E-R-A-R-Y.
0: Shabash, that is the correct answer. Oh my God. Laid back, relaxed, but he's pretty good at spelling. Ankit, if Puneet gets this one, then his name goes into the draw. It's a best of three, okay?
2: Okay.
0: Next word for this morning is cuisine.
2: Big Ankit.
0: Big Ankit, bolo.
2: C-U-I-S-I-N-E.
0: Yes, shabash, kya baat hai, ekdam even Stevens, one all. And now we go towards a penalty shootout. Let's see ki kya hota hai. Last and final word of this morning. Jisne is pe mara chauka, ho gya uska mauka. Ready guys?
2: Ready.
0: Who can tell me the spelling of Mediterranean?
2: Big Ankit.
0: Big Ankit. Strategy.
3: Big Puneet.
0: Ankit, bolo.
2: M-E-D-I-T-T-E-R-E-A-N.
0: गलत जवाब। पुनीत, गिव इट अ शॉट, कम ऑन। मेडिटेरेनियन। पुनीत ने कर दिया है गूगल सर्च।
3: यस यस।
0: और इसके साथ टाइम आपका खत्म कर रहा हूं मैं यहां पर। यू कैन नॉट डू अ गूगल सर्च। ऑलराइट, वी आर बैक टू 1-1। लेट अस डू वन फाइनल वर्ड फॉर दिस मॉर्निंग। Are you guys ready? It's not a very difficult one. Ankit, Puneet, ready?
3: Ready.
0: The word is Caribbean.
2: Big Ankit.
0: Big Ankit, bolo.
2: C-A-R-I-B-B-E-A-N.
0: Bilkul sahi jawab, Ankit, you did it. Wow. Yaar, I have to kind of take my hat off to both of you. Halanki main topi unke nahi aaya hu. Badi achhi spellings hai aap log ki. Yaar, kya kaam karte ho Ankit aap?
2: I am into risk management.
0: Oh, wow. I'm going to get back to that. But Puneet, what about you?
3: I am in banking sector.
0: Banking sector. Ankit, because you're into risk management, आपने एक बहुत ही अच्छी तरकीब सिखा दी है सारे सुनने वालों को कि गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, आंसर आए ना आए, बजर दबाना चाहिए।
2: Right.
0: वेरी गुड स्ट्रेटजी यार पुनीत, बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पार्ट इन आवर कॉन्टेस्ट। ओनली वन विनर कुड बी देयर। आपने बिल्कुल अमेजिंग कांटे की टक्कर दी अंकित को।
3: थैंक यू सर,
0: टेक केयर मैन, टेक केयर पुनीत। बट अंकित आपने तो मार दिया मौके पे चौका, योर नेम गोज इनटू द ड्रॉ एंड यू कैन बी इन दिस अमेजिंग स्टेकेशन एट द रिक्सॉस अलमायरिड, साथ में यू वन टू मूवी टिकट्स एंड एन एफएमबी वाउचर एज वेल, कांग्रेचुलेशंस।
4: थैंक यू।
0: तो जब आपने इस गेम के बारे में सुना तो आपने इसकी रिस्क असेसमेंट करके क्या नतीजे पे आप पहुंचे?
2: मैंने देखिए, रिस्क असेसमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिस्क जो है मिटिगेट हो सकती है, एलिमिनेट नहीं हो सकती। तो जो मैंने सीखा वो यही था कि बस बजर दबाना है, अपना नाम लेना है और चाहे आए या ना आए, बाकी प्रेशर उसी पर आ जाता है।
0: यार बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग, मतलब बजर दबाओ, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एनीवे। सो आपने, इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटजी बाय द वे यार, सो यू हैव प्रूव्ड टू द एंटायर यूएई कि रिस्क मिटिगेशन के मामले में अगर कोई बंदा एकदम सर्वोच्च है वो है अंकित। कांग्रेचुलेशंस, अमेजिंग अमेजिंग, आपने जो पढ़ाई की है उसको आप अच्छे खासे यूज कर रहे हो, सो मेनी कांग्रेचुलेशंस। वी गॉट ऑल आवर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर यू कि जब ड्रॉ हो उसमें से अगर आपका नाम निकला यू विल विन दिस स्टेकेशन, बट इन द मीनवाइल एंजॉय द मूवी टिकट्स एंड द एफएनबी वाउचर।
2: थैंक यू सर,
0: टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ। दैट इज अंकित, हमारे आज के विनर भी हैं, ड्रॉ एंट्रेंट भी हैं, इतना कुछ आपके पास जीतने का मौका, सो डू नॉट लेट दिस मौका पास यू बाय। द बिग समर सरप्राइज इज बीन मेड पॉसिबल बाय आवर प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्केचर्स, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सॉस अलमायरिड रसल खेमा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट, कल सुबह एक बार फिर एग्जैक्टली एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग द स्पेल बैटल वंस अगेन विद टू मोर ऑफ यू एंड वन मोर नेम गोज इन टू द ड्रॉ टू विन दिस वंडरफुल स्टेकेशन एट द रिक्सॉस अलमायरिड in Russell Khema. Keep WhatsApping, din bhar WhatsApp karte raho. That's what I would do if I was in your position. Of course, I cannot win this staycation. Varna, main to WhatsApp karta rehta. BSS space name to 0543091062. Big

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: Finally, there's going to be a good game at a sane hour at the World Cup.
2: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Aaj raat 8 baje, 8 p.m. UAE time is going to be Argentina versus Egypt. Messi versus Mo Salah. Lip-smacking contest. I just want to use that. मस्त है ना, लिप स्मैकिंग कॉन्टेस्ट है ये आज रात को 8 बजे. उसके बाद आज रात 12 बजे इज गोना बी द फाइनल राउंड 16 व्हिच इज स्विट्जरलैंड वर्सेस कोलंबिया एंड देन क्वार्टर फाइनल्स विल ऑल बी सेट. अभी तक फ्रांस वर्सेस मोरक्को, स्पेन वर्सेस बेल्जियम, नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड एंड देन फाइनली हु वर्सेस हु होने वाला है 12th जुलाई 5 AM. वील फाइंड आउट टू नाइट एज वेल. अगर आप सोच रहे हैं अभी भी यार कि कहां पर जाकर गेम्स को देखूं वर्ल्ड कप के, यू कैन कैच एवरी वर्ल्ड कप मैच लाइव एट सिटी मैक्स होटल्स का ऑफिशियल फैन जोन अक्रॉस दुबई. दैट डजंट मेक यू स्क्रीम गोल. दे आर ब्रॉडकास्टिंग गेम्स पास्ट 3 AM एज वेल, सो यू कैन चूज चीयर फॉर योर टीम ऑन जायंट स्क्रीन्स एट द हटल इन बार दुबई, अल बर्शा, एट द मॉल, एट ब्रू हाउस इन बिजनेस बे. डिग इन टू एक्सक्लूसिव वर्ल्ड कप फूड स्पेशल्स जैसे कि फीफा 11 प्लेटर्स एंड मच मोर दैट आर क्रिएटेड जस्ट फॉर match days. Score happy hour deals with select beverages from just 24 dirhams at the Huddle Al Barsha, 12 se lekar 9 every single night. Head to the Huddle Bar Dubai for select beverages from 31 dirhams plus 25% off your total bill. Again, 12 p.m. to 9 p.m. daily.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: 10:11 minutes. Yeah, if you, in case you're not used to listening to my voice, at this hour of the day, I don't blame you. This is just the second day of the show with extended timing. 7 to 11, our show time, and not 6 to 10. It is now time for the big Bollywood quiz. Chance for you to win two open movie tickets. If you have an easy Bollywood सवाल का जवाब दिया तो टुडे इज MS धोनीज 45th बर्थडे. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इफ नॉट द ग्रेटेस्ट इंडियन कैप्टन ऑफ ऑल टाइम. उनकी बायोपिक से जुड़ा एक सवाल है. मेक यू लिसन टू अ सीन. इस सीन को सुनिए. अगर आपने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी देखी है तो डेफिनेटली यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन. इस सीन में MS धोनी यानी कि सुशांत सिंह राजपूत एज MS धोनी कौन से प्लेयर की बात कर रहे हैं?
2: तो डे टू में हम आउट हो गए 84 रन पे. पूरा टीम आउट हो गया 357 रन पे. पंजाब बैटिंग करने आता है, उनका पहला विकेट गिरता है 60 पे. फिर बैटिंग करने आता है डे टू के एंड का स्कोर 108 पे 1 डबल सेंचुरी. बहुत मारा.
1: किसने बहुत मारा अकॉर्डिंग टू MS धोनी? विच क्रिकेटर इज ही टॉकिंग अबाउट? आई हैव पर्पसली कट आउट द नेम ऑफ दैट क्रिकेटर. अगर आपने पहचान लिया कौन से क्रिकेट की बात कर रहे हैं इन दिस फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, गिव मी अ कॉल राइट नाउ 800-1062. दैट्स द नंबर 800-1062. सही जवाब दीजिए एंड यू कुड विन टू ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज.
0: बिग 106.2.

0: लास्ट डे मैंने आपको एक डायलॉग सुनाया था फ्रॉम एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें एमएस धोनी आई थिंक वो सिटिंग एट अ चाय समोसा शॉप और वो सिंघाड़ा जैसे बिहार में कहते हैं ना, वो खाते हुए ही वाज डिस्क्राइबिंग तारीफ करोइंग अनदर क्रिकेटर, उनके टीममेट आगे चलकर वन ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड्स, देन दे कैन हैड अ बिट ऑफ अ रिफ्ट. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? लेट्स आस्क शिविका विद मी ऑन द फोन लाइन. गुड मॉर्निंग शिविका, हाउ आर यू डूइंग?
1: Hi, good morning, sir. I'm doing good. How are you?
0: Very, very good. Bataiye, are you a cricket fan or are you just into MS Dhoni?
1: No, I have watched MS Dhoni like twice or thrice, I think.
0: Ha, so you are a film fan. So batao, what is the correct answer?
1: It's Yuvraj Singh.
0: Absolutely correct. Two open movie tickets aapke ho gaye. Congratulations.
1: Thank you.
0: And Shivika bahut hi important kaam karti hai. And you're a student counselor, is it? At a school?
1: Yeah, right.
0: So, आप मतलब सिर्फ बच्चों की काउंसलिंग करती हैं या पेरेंट्स भी आपसे काउंसलिंग ले सकते हैं? Because I'm turning into a public menace. मतलब मैं बहुत ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हूँ, मेरे को बहुत खरी खोटी सुननी पड़ती है फ्रॉम माई फैमिली. बट इफ आई वर टू आस्क यू व्हाट इज द वन बर्निंग क्वेश्चन दैट पेरेंट्स हैव दीज डेज टू आस्क टू अ काउंसलर?
1: इट्स लाइक चिल्ड्रन स्ट्रेस अ लॉट ओवर स्टडीज दीज डेज.
0: रियली?
1: या They're really possessive about their marks and all.
0: यार मतलब impression तो ऐसा पड़ता है ना कि बिल्कुल ही chill out हो गए हैं students, don't really, they're more into gaming than studies and all of that. But जितने भी मैं parents से सुनता हूँ, and you know, some of my friends are teachers also, they all say कि यार पढ़ाई को लेकर कुछ ज़्यादा ही seriousness हो गई है आजकल, हाँ?
1: Yeah, right. और लोगों को क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा serious targets हैं और they need to follow that, so they have some goals and all set for themselves.
0: मतलब बहुत जल्द काउंसलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आपको डर लगता है कभी?
1: नहीं, काउंसलिंग की तो जरूरत है आई थिंक.
0: But very nice.
1: Even if they're doing great, like, yeah.
0: What is the one question that students are asking you these days? I mean, is it about balancing studies or extracurriculars or what kind of queries?
1: Actually, they are behind skills also, developing skills and all. So, that is the most discussed topic.
0: Nice.
1: Yeah.
0: Shivika, you're doing a very important job, and congratulations for all the wonderful work that you're doing, and keep it up, and congratulations once again. Thank you so much for taking part in our contest.
1: Thank you so much.
0: By the way, आपकी छुट्टी भी हो गई या what?
1: हाँ, मेरी छुट्टी हो गई है.
0: आपकी छुट्टी हो गई?
1: कल से start हुई.
0: So are you going to join a summer camp or what are you going to do the छुट्टी से? Travel?
1: No, I'm just chilling right now. I'm on my way to Abu Dhabi.
0: Very nice. Enjoy the drive and thanks so much. Pleasure talking to you.
1: Thank you so much.
0: That is Shivika, hamari aaj ki winner. Don't forget, every day you have a chance to flex a bit of your Bollywood muscle and walk away with two open movie tickets in the big Bollywood quiz. Happy birthday, MS Dhoni. By the way, aaj 8:30 baje India England third T20 bhi hone wala hai, and that's going to be in Trent. This is the Big Breakfast with me, Sid. Good morning. चोरी चोरी जब हो आंखें चा

0: 101.2 The Beat of Bollywood. The Big Breakfast brought to you by Zulekha Hospital. Your health matters.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Listen to her every day.
2: Mugambo! खुश हुआ
3: सुना है आप दोनों ने गाना
4: जी जी सुना
3: चलो नहीं नहीं अभी तो सर मैंने सवाल ही नहीं पूछा है
4: अच्छा
3: नहीं किस चीज के लिए बिग दिलीप बोला आपने मैं जानना चाह रही हूँ
4: मैं समझा कि गाने को आइडेंटिफाई करना है कि क्या
3: पर मैंने तो गाना सुना ही दिया इसमें क्या आइडेंटिफाई करोगे
4: पूरा सुनाई दिया करेक्ट
3: चलो अब आपका पहला सवाल है नेम द एक्ट्रेस जो इस गाने में थी
4: बिग दिलीप कैटरीना कैफ
3: श्योर हो सर आप
4: Yes, बिल्कुल
3: ने सोच के बोला बिल्कुल सही जवाब कैटरीना कैफ इज द राइट आंसर
4: थैंक यू
3: गाना जो आपने अभी भी सुना थी और ये किस मूवी से था
4: बिग दिलीप
3: हां जी
4: सिंह इज सिंह
3: बिल्कुल सही जवाब
5: कांग्रेचुलेशन दिलीप
3: हाय यार जहीर आप सच्ची बड़े दिल वाले हो
5: कोई बात नहीं है बेटर लक नेक्स्ट टाइम
3: हाउ स्वीट वी नीड मोर पीपल लाइक जहीर तालियां जहीर के लिए भी यार सब किसी ने नहीं किया आज से
4: यार आई लाइक दिस स्पिरिट यार आई लाइक
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: It's 10:20. I get a bit of time to get used to saying 10. Because that's what the extended timings are 10 to 11 as well is the big breakfast. But aaj 8 minute ki dekh lene wali hai S116 par. There's been an incident being reported and this is going towards 611 from 311 heading east. So be careful. Also talking about 311 heading south going towards Dubai from Sharjah. Aapko milegi 7 se 9 minute ki dekh both these arteries par. Then there's D62 Beirut Street par right outside Madina Mall heading south is a bit congested. Also waterfront in Dera is a bit congested. Al Fahidi area mein aapko traffic milega 3 se 4 minute delay out there. Then there's E44 Al Khail Road going towards Business Bay. You'll find a 3 to 4 minute stoppage time. Upsikim Street par achanak there's been a bit of congestion and this is going towards 311 heading towards 311 from 44. In case you spot something, 800-1062 is my number.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE. Starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
7: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे लोग भूल जाते हैं सर कहाँ लेकर आए थे कहाँ लेकर जाओगे मिट्टी से निकले थे मिट्टी में मिल जाओगे
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood Big 106.2 Fast Track Song of the Hour Brought to you by selfdrive.ae

0: यार मतलब प्रीतम चक्रवर्ती अगर स्कूल में होते ना तो उनके टीचर्स उनके लिए कहते हैं कि यार ये बिल्कुल राजा बेटे, ये और कुछ होना हो ये बच्चा मेहनत करता है।
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: प्रीतम चक्रवर्ती के तरफ से काम में मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी, बाकी पिक्चर का आप आगे संभालो। कॉकटेल 2 से ये लेटेस्ट सुपरहिट गाना जग से लार्ज, इट इज ऑन ऑल टॉप 10 अराउंड द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड काउंटडाउन्स। दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड। इन केस यू वांट टू लुक फॉर द नेक्स्ट डाइनिंग डेस्टिनेशन, भाई अगर आप बहुत सारा टाइम वीकेंड पर वेस्ट कर देते हो ये चूज करते हुए कि कहाँ जाना है, मैं बताता हूँ कहाँ जाना है। डिस्कवर 4 यूनिक डाइनिंग डेस्टिनेशंस, पैरोस, नोनिया, शामियाना एंड टीजेज, ऑल एट ताज JLT। स्टनिंग रूफटॉप सनसेट्स का आप मजा यहाँ पे उठा सकते हैं। मेडिटेरेनियन फ्लेवर्स हैं, शीक वाइब्स एट पैरोस, सेवर ऑथेंटिक एशियन डेलिकेसीज एंड वाइब्रेंट एम्बियंस एट नोनिया, एक्सपीरियंस ऑल डे डाइनिंग एट शामियाना एंड अ लाइवली सोशल सीन एट टीजेज। मेक योर वीकेंड्स मेमोरेबल विद द नीसी ब्रंच एवरी फ्राइडे एट पैरोस, रेट्रो ब्रंच एवरी संडे एट नोनिया एंड द पॉपुलर इवनिंग ब्रंच एट टीजेज।

0: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलरस से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रह

0: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम।
2: गोइंग टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा।
3: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: बिग 106.2

0: इट्स नॉट जस्ट अबाउट इश्क विश प्यार व्यार ऑल द टाइम. कुछ लोगों के साथ हमारा लव हेट रिलेशनशिप होता है.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: For example, Sanju Samson and the Indian selectors. I mean, kabhi love, kabhi hate, aisa chalta rehta hai. And what we've heard recently is the fact that 23rd of July, India-Zimbabwe ki jo T20 series hai. I mean, people would say Sanju Samson fans ke, you know, form mein wapas aane ke liye, this kind of a series is ideal, tailor-made. Lekin, Sanju Samson ko bahar bitha diya hai. Selectors ne ek baar phir, and Vaibhav Suryavanshi is tipped to open the innings with Abhishek Sharma. Ishan Kishan is going to be the wicketkeeper. Haan, isme Prab Simran Singh jaise players are also going to make their debut. So there's a bit of experimentation going on in the Indian camp. Going to put up a poll on this also on our Insta page. Don't forget our Insta handle is 106.2 Big FM. Wahan par jaiye, you can take part in the poll. Do you think that Sanju Samson should have been rested for the Zimbabwe T20 series or not? What is your opinion? You can express yourself on our Insta page 106.2 Big FM. But I think if there's one person who needs insurance, could there be some like a rest insurance? हाँ, के साउंड्स लाइक भाई रेस्ट करने के लिए क्या इंश्योरेंस, लेकिन किसी क्रिकेटर के लिए इट माइट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट? इफ देयर इज वन पर्सन हु नीड्स सम इंश्योरेंस ऑफ सम काइंड, इट इज संजू सैमसन. टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस, insurancemarket.ae के 30,000 गूगल रिव्यूज के बावजूद इज अ 4.8 स्टार रेटिंग दैट दे एंजॉय. बिल्ट इन द UAE, ट्रस्टेड अक्रॉस द UAE. एवरी रिव्यू इज अ स्टोरी ऑफ ट्रस्ट, एवरी पॉलिसी अ प्रॉमिस केप्ट. insurancemarket.ae.

जो दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारो नीनो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: दे देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता। I'm a hustler, A1, lifestyle, A1। ए मुझे ना सिखाओ घंटे पे फेम, एक ही बस एम, जो जलते हैं उन्हें और जलाओ। हिटरों की छातियों पे रख दीवे बाल, कटोर मरावा के तिछोरे करनाल, के डैश अपनी दिल्ली से देरा दून, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर।

0: Big Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 16.2. The beat of Bollywood.
1: डांसिंग के खजाने काट रहे जरा जोर से बोले बे।
2: Get ready for a treasure hunt like no other. Indra Kumar, Bhushan Kumar and Ashok Takeria invite you to the biggest family entertainer of the year, Dhamaal 4. Starring Ajay Devgan, Ritesh Deshmukh, Arshad Warsi and Javed Jafri. Directed by Indra Kumar. Releasing on 10th July. Distributed by Al Nisar Cinema Film. Powered by Big 106.2.
0: The Big Mix, brought to you by InsuranceMarket.ae.
3: InsuranceMarket.ae.
0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song, and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix, miss kiya gaya.
4: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
5: बिंदी बड़ा क्यूट नाम है और आप आवाज मतलब इतनी क्यूट आवाज है आपकी, क्या करते हो बिंदी?
4: थैंक यू
5: बस हम यही करते रह जाते ना, एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं खीकी करके।
4: कम नरण हो।
5: इनकी पर्सनालिटी के बारे में क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है बताओ मुझे।
4: वो एक जो वो दिल में नहीं रखती है कुछ भी और बोल्ड सामने बोल देती है,
5: अच्छी बात है ना। वो तो
4: वो अच्छी लगती है बात।
5: एंड एक्टर भी एकदम A1, मतलब शी सच अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस है ना।
4: ब्रिलियंट एक्ट्रेस है पर इतनी मूवी नहीं आई।
5: इतना सोच के जो बोला है कि यार अच्छा है जो बोल रही है जोरा, अग्री कर लेती हूँ चुपचाप।
4: नहीं जरूरत वहाँ भी बोल देती है।
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 PM. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour. Brought to you by InsuranceMarket.in.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. Listen to her every day.
1: Mugambo, khush hua.
2: सुना है आप दोनों ने गाना?
3: जी सुना।
2: चलो नहीं नहीं अभी तो सर मैंने सवाल ही नहीं पूछा है।
3: अच्छा,
2: नहीं किस चीज के लिए बिग दिलीप बोला आपने, मैं जानना चाह रही
3: हूँ। मैं समझा कि गाने को आइडेंटिफाई करना है कि क्या,
2: पर मैंने तो गाना सुनाई दिया, इसमें क्या आइडेंटिफाई करोगे
3: आप?
2: चलो अब आपका पहला सवाल है, नेम द एक्ट्रेस जो इस गाने में थी।
3: बिग दिलीप, कैटरीना कैफ।
2: श्योर हो सर आप?
3: Yes, बिल्कुल।
2: सोच सोच के बोला, बिल्कुल सही जवाब, कैटरीना कैफ इज द राइट आंसर।
3: थैंक यू।
2: गाना जो आपने अभी सुना तेरी ओर, ये किस मूवी से था?
3: बिग दिलीप।
2: हाँ जी,
3: सिंह इज सिंह।
2: बिल्कुल सही जवाब।
4: कांग्रेचुलेशन दिलीप।
2: हाय यार जहीर, आप सच्ची बड़े दिल वाले हो।
4: कोई बात नहीं है।
2: हाउ स्वीट, वी नीड मोर पीपल लाइक जहीर। तालियां जहीर के लिए भी यार, सब किसी ने नहीं किया आज से पहले।
3: आई लाइक दिस स्पिरिट यार, आई लाइक दिस।
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 054-309-1062. Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपने कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइंस। इन कॉइंस को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: What's up, everyone?

0: Big Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood. The Big Mix. Brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247. To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song, and your message to 054-309-1062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix, miss kiya gaya.
1: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
2: बिंदी बड़ा क्यूट नाम है और आप आवाज में, मतलब इतनी क्यूट आवाज है आपकी, क्या करते हो बिंदी?
1: थैंक यू
2: बस हम यही करते रह जाते ना, एक दूसरे की तारीफ करते रहते खीकी करके
1: कम न रहना।
2: इनकी पर्सनालिटी के बारे में क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, बताओ मुझे।
1: वो एक जो वो दिल में नहीं रखती है कुछ भी और बोल्ड सामने बोल देती है,
2: अच्छी बात है ना। वो तो
1: वो अच्छी लगती है बात।
2: एंड एक्टर भी एकदम A1, मतलब शी सच अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस है ना।
1: ब्रिलियंट एक्ट्रेस है पर इतनी मूवी नहीं आई उसकी।
2: इतना सोच के जो बोला है कि यार अच्छा है जो बोल रही है सौरा, अग्री कर लेती हूँ चुपचाप।
1: नहीं जरूरत तो वहाँ भी बोल देती है।
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 PM. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड आफ्टरनून, इट्स 107 ऑन द बिग क्लॉक।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
3: 36 डिग्री सेल्सियस है बाहर, ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है 57%, हाईज होपफुली इससे ज्यादा नहीं एक्सपेक्टेड है, लोज जाएंगे आज सिर्फ 33 तक.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट alras.me. बिग 106.2.

0: 20,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Hanji, good afternoon. 118 on the big clock. Yes, you're with me, Zohra, all the way until 5. Filhal, is pehle ghante mein hum khel rahe hain The Big Bollywood Undercover. A very fun game jahan pe main aapko 3-4 clues deti hoon. And un clues ko sunke aapko mujhe batana hai which Bollywood celebrity am I talking about? Theek hai? Aaj ke jo celebrity hai, clues dhyan se suno. Very simple, it's actually very easy. Ye clues bhi jo hai, isse bahut easily pata chal jayega. Okay. He is... यार मैं इजी वाले से नहीं शुरू करना चाहती, चलो ये बोलती हूँ. ही इज वर्क्ड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर. नाउ ही इज अ वेरी फेमस एक्टर, बट बिफोर बिकमिंग एन एक्टर ही इज वर्क्ड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑन मूवीज लाइक करण अर्जुन एंड कोयला. ही इज हैड फेमस कैमियोज, वेरी वेरी फेमस कैमियोज, जैसे डॉन 2 एंड अ वेरी रीसेंट स्पाई मूवी. ही वॉज द फर्स्ट बॉलीवुड सुपर हीरो एंड इनको प्यार से लोग डुग्गू कहते हैं. चार क्लूज है. ही इज वर्क्ड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर बिफोर बिकमिंग एन एक्टर ऑन मूवीज लाइक करण अर्जुन एंड कोयला. इनके बहुत फेमस कैमियोज रहे हैं, बहुत फेमस ऐसे स्पेशल अपियरेंसेज जैसे डॉन 2 एंड अ वेरी रीसेंट स्पाई मूवी, जिनके क्लिप्स बहुत वायरल जा रहे हैं. ही वॉज द फर्स्ट बॉलीवुड सुपर हीरो एंड इनको प्यार से लोग डुग्गू के नाम से जानते हैं. किस सेलिब्रिटी की मैं बात कर रही हूँ? इफ यू थिंक यू नो द राइट आंसर, यू क्रैक्ड इट, कॉल मी हमारे टोल फ्री नंबर पे विच इज 800-1062. दैट्स 800-1062. बताओ मुझे कि मैं किस सेलिब्रिटी की बात कर रही हूँ.

0: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, सब आ रहा है, गुस्सा आ जाएगा, आ रहा है। देखिए
0: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
4: Listen to her every day.
5: Mugembo! खुश हुआ।
6: अब हर शाम हम गाड़ी में करेंगे कारियोकी।
4: कारियोकी
6: ट्रैक सुनाती हूँ, ट्रैक पे ही गाना है अपने।
7: अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान।
6: वाह,
7: कैसे थामे गाना ना, तूफान।
6: ऐसा लग रहा है कि मेरे मेहमान भी भाग जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा पता चले इस चक्कर में मेरी क्लास लग जाए। मुझे लगता है द मेल वर्जन वैंडी ने ज्यादा अच्छा गाया।
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
8: Hey, jaldi hata tera khatara. Chal hata. Arey jaldi hata.
2: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: हाँ जी, ट्रैफिक हाल फिलहाल E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड जा रहे हैं शारजा की तरफ। हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा स्टार्टिंग मर्डर सिटी सेंटर। इनफैक्ट इफ यू आर अराउंड अल तवार 4, वहां पे एक कार एक्सीडेंट की वजह से आपको मिलेगा कम से कम 8 मिनट का डिले। एक और कार एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ है अराउंड एग्जिट 18, दिस इज ऑन E11 इफ यू आर हेडिंग टूवर्ड्स शेख राशिद रोड हेल्थ केयर सिटी के पास। ये एक्सीडेंट हुआ है कॉजिंग अबाउट अ 12 मिनट डिले ऑन दैट रोड एज वेल। DIFC के पास E11 शेख जायद रोड लाइट ट्रैफिक आपको मिल जाएगा 2-3 मिनट का डिले। रेस्ट यूजुअल ट्रैफिक आपको मिल जाएगा D86 पे। ऑल्सो अगर आप है D63 पे, थोड़ा सा बंपर टू बंपर ट्रैफिक जस्ट फॉर अबाउट 2-3 मिनट्स। एनी अदर अपडेट यू कैन लेट अस नो ऑन आवर व्हाट्सएप व्हिच इज 0543091062।
2: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
9: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
10: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूं।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मजा ले।
1: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 206 ऑन द बिग क्लॉक। गुड आफ्टरनून।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Hanji, hello, hello. Zohra ke saath on the Big Mix. It is 2:16 on the Big Clock. I keep you company until 5. Filhal on the Big Bollywood Tea. Aaj hum baat kar rahe hain about something that has just released some few hours ago. Now, obviously, is movie ki excitement to bahut zyada hai hi. All the millennial girls. I think agar unse aap pooch lo ki aapke favorite actor kaun hai. I think the Shah Rukh Khan, Salman Khan, ye sare answers jo hai ye baad mein aayenge. Lekin sari ladkiyan pehle chilla kar bolengi Imran Hashmi. ये ऐसी एक मिलेनियल लड़की नहीं होगी जो बोलेगी मुझे इमरान हाशमी नहीं पसंद है. और अगर आपने बोलते आपको नहीं पसंद है देन यू एंड आई कैन नॉट बी फ्रेंड्स बिकॉज कम ऑन ही इज द हार्टथ्रोब ऑफ ऑल दीज मिलेनियल गर्ल्स एंड आई एम वेरी श्योर जेन ज़ी विल अग्री विद अस. बट नॉनदरलेस बात कर रही हूँ मैं आवारापन 2 की. जब से मूवी का अनाउंसमेंट भी निकला था एवरीवन वाज एक्साइटेड. फिर छोटा सा टीजर, ट्रेलर, कास्ट रिवील, ये सब कुछ हुआ, एक्साइटमेंट बढ़ती गई. देन रिवील हुआ कि जो दो उसके ओजी गाने थे तो फिर आओ एंड तेरा मेरा रिश्ता, ये गाने रिवाइव होने वाले हैं इन द मूवी, ऑल द मोर बेटर. अब इसका पहला गाना हुआ है रिलीज, इट्स कॉल्ड वे जुनून. आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर इट, बट मैंने अपनी फिंगर्स क्रॉस रखी थी बिकॉज आई रियली वांटेड मुस्तफा जाहिद टू बी सिंगिंग द फर्स्ट सॉन्ग दैट इज रिलीज्ड. इट्स नॉट द केस. सिंगर नेम्ड सुबोध शर्मा हैज संग इट. छोटा सा आपको क्लिप सुनाती हूँ.

I'm liking it already. I know that the song will grow onto you, definitely. Thoda sa yara vibe hai isme. And I feel like the singer Subodh Sharma jo hai, he's very Vishal Mishra coded. He's sounding nice, but I really just feel like, yaar, kuch gaane aapki expectation reh jaati hai ki, yaar, ye singer gaata to achha hota. Like some songs, I'm just thinking now at the top of my head, right? If you had to imagine songs, certain songs that were massive hits, jo aapko pata hai ki ye gaane ki dhun aate hai, aapko pata hai is, you know, singer ki awaaz aayegi. If, you know, wo gaane mein se us singer ko hata ke kisi aur singer ko dal diya jaye, would that be okay with you? Or you feel like, nahi, some songs were written for some artists only, usko recreate, reimagine mat karo in different voices because it's not going to be okay with you. For example, tu meri adhuri pyaas jo गुजारिश गाना था उसका स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो सोनू निगम ने किया है. अगर वो सोनू निगम ने नहीं किया होता तो वो गाना वो सेम नहीं होता. दैट्स व्हाट आई फील लाइक. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? इफ सर्टन सॉन्ग्स हैड टू बी रीसंग इन डिफरेंट सिंगर्स वॉइसेस, वुड दैट सिट डाउन वेल विथ यू कि हाँ यार, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए दिखाने का दैट दे कुड डू दैट सॉन्ग ब्यूटिफुली? और डू यू फील लाइक, नहीं, अगर ये गाना इसने गा दिया इनका थप्पा लग चुका है, डोंट मेस अराउंड विद इट. लेट मी नो योर थॉट्स 800-1062 पे. यू कैन इवन डीएम अस 106.2 बिग एफएम पे. It's 2:19 on the Vic Log. Good afternoon.

0: हो गया पिछले
1: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
2: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
3: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
4: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
5: It's 36 degrees Celsius outside. Humidity has gone up to 60%. Hopefully, highs are just as zyada nahi jayenge. We're expecting the temperatures to drop to 33. Bright, sunny and humid day.
1: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
6: Tum apne aap ko बहुत पसंद करती हूँ.
7: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ.
1: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae.

0: 105.2 The Beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
1: ट्रैफिक का हाल फिलहाल, इफ यू आर ऑन E311 शेख मोहम्मद जायद रोड लेकर आप जा रहे हैं शारजा की तरफ, हैवी ट्रैफिक अभी से शुरू हो चुका है। तवार 3 से ये ट्रैफिक शुरू हो रहा है, गोइंग ऑल द वे अंटिल शारजा इंडस्ट्रियल एरिया 12। आपको मिल जाएगा E311 पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक फॉर अबाउट 25 मिनट्स। उसके अलावा आपको मिलेगा थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक इतिहाद स्ट्रीट पर, अगर आप है खबैसी स्ट्रीट से जा रहे हैं नादा 1 की तरफ, वहां पे भी 8 से 10 मिनट का आपको डिले मिल सकता है। उसके अलावा अगर आप है E3 रबात स्ट्रीट हेडिंग टुवर्ड्स शेख राशिद रोड, तो वहां पे एक व्हीकल ब्रेकडाउन की वजह से आपको मिलेगा थोड़ा सा ट्रैफिक, अबाउट 7 मिनट डिले ऑन दैट रोड। थोड़ा सा ट्रैफिक आपको मिल जाएगा E44 साउथ, अगर आप जा रहे हैं ऊद मेहता की तरफ, तो वहां पे कार एक्सीडेंट की वजह से अबाउट 5 to 6 मिनट्स डिले। एनी अदर ट्रैफिक अपडेट यू कैन लेट अस नो ऑन आवर व्हाट्सएप 0543091062।
0: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे लगा इस गाने में कह रही कैंदी पॉ. आई डिड नॉट नो इट वॉज पंप अप द जैम. इट टुक मी सो लॉन्ग टू रियलाइज दैट दैट हैड लिरिक्स एंड इट वॉज नॉट जस्ट अ रैंडम साउंड. बट एनी वे नाउ दैट वी नो की क्या कैंदी कुड़ी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टार. इट इज 2:47 ऑन द बिग क्लॉक हेडिंग इनटू द थर्ड आवर ऑफ द शो विद मी ज़ोहरा. मेक श्योर यू आर लिसनिंग टू मी आने वाले इन दो घंटों में भी. साथ ही साथ यू आर ऑल्सो फॉलोइंग अस ऑन आवर सोशल्स विच इज 106.2 बिग FM. वहां पे हम सारी स्टोरीज, हम सारा डेली कंटेंट डालकर आपको वी मेक श्योर दैट वी कीप यू एंटरटेन्ड ओवर देयर एज वेल. सो मेक श्योर टू गो शो अस सम लव ओवर देयर 106.2 बिग FM पे हेडिंग इनटू द नेक्स्ट आवर ऑफ द शो द बिग मिक्स विद मी ज़ोहरा.

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून, इट्स 3:07 ऑन द बिग क्लॉक।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ओल्ड टाउन रोड एंड रमता जोगी का ये मैशअप ऑन द बिग मिक्स एंड अभी हम वही करने वाले हैं. वी आर डेफिनेटली टेकिंग अ ट्रिप डाउन दैट मेमोरी लेन.
1: द बिग मिक्स विद ज़ोहरा ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: बिकॉज द ओल्ड टाउन रोड इज फुल ऑफ ऑल थिंग्स दैट पीपल आर चूजिंग टू फॉल बैक इन लव विद. आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूअर जनरेशन यार. उनको हमने इंट्रोड्यूस करा दिया हमारी चीजों से, हमारे जमाने की चीजों से, और अब उन्हें प्यार हो चुका है. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी, द न्यू जनरेशन नाउ फील्स की दे आर फॉलिंग इन लव विद द ओल्डर थिंग्स. ना हमारे टाइम पे हम ओल्डर थिंग्स क्या कहते थे, हमारे मम्मी पापा जो यूज करते थे उन्हें हम ओल्ड थिंग्स कहते थे. जैसे वाइनल रिकॉर्ड्स हो गए, मैंने तो कभी नहीं यूज़ किया बट मम्मी पापा यूज़ करते थे. विंटेज का गाड़ियाँ हो गई एंड ऑल ऑफ दैट. सो वी यूज टू हैव यू नो अ फैसिनेशन विद दोज ओल्डर थिंग्स. अभी जो हमने अपने स्कूल कॉलेज में यूज़ किया था एज मिलेनियल्स, जेन जी को अब वो पता चल रहा है. नाउ दे आर फॉलिंग इन लव विद दोज ओल्डर थिंग्स इंस्टेड ऑफ द न्यूअर थिंग्स जो अभी अवेलेबल है. सो दे आर कॉन्शियसली चूजिंग दैट. अब मैं लिस्ट बताती हूँ, उसमें से कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ. जैसे सिंपल स्मार्ट वॉचेस, सिंपल वॉचेस तो अब का है जो people are choosing to you know avoid now, and I feel like I'm the same. I feel like those watches are a statement piece, they are a conversation starter. Log aapki watch dekh ke aapse baat karte hain. Smart watch dekh ke kisne aapse aake conversation start ki, oh I like your smart watch. Not a single person. Wired headphones, from day one I have been screaming my lungs out ki wired headphones are the best. Maine aaj tak kabhi wo you know the without wire wale jo ear pods hai kabhi nahi use kiye, and I feel like I'm a fan, number one fan of wired headphones. Analog clocks, mere ghar ke kisi bhi kone mein ek डिजिटल क्लॉक आपको नहीं मिलेगी. आई एम अ फैन ऑफ द ओल्ड स्कूल क्लॉक्स. पेपर बुक्स, आई एम ऑल्सो समवॉट एन एविड रीडर, तो मुझे बहुत पसंद है किताबें पढ़ना. आई हैव नेवर यू नो रेड बुक्स ऑन एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. फिल्म कैमराज, आई एम अ फिल्म स्टूडेंट माई सेल्फ, तो मेरे घर पर ये पुराने कैमराज आपको बहुत दिखेंगे, शो पीस में पड़े हुए हैं. आई डोंट यूज देम एनी मोर बट आई हैव ऑलवेज बीन इन लव विद देम, फिल्म कैमराज वगैरह. हैंड रिटन नोट्स, नाउ दिस इज अनदर थिंग. A lot of people feel like आजकल इतना convenient हो गया है, गिफ्ट ऑर्डर कर दिया, किसी के लिए भिजवा दिया, डिलीवर करवा दिया, एंड there's a typed note that is sent along with it, है ना, default. I will never do that to anyone. अगर मैंने आपको कोई भी गिफ्ट भेजा है, I will make sure मैं हाथों से अपने हैंड रिटन प्यारा सा नोट, थैंक यू, सॉरी, जो कुछ भी है लिखूँ और आप तक भिजवाऊँ. I am a strong believer of that. So there are many such things, the old things that are now coming back in trend. उसमें से एक और चीज़ है, which are the physical alarm clocks. Now this is one thing I don't agree with, because बहुत hassle है, I feel. क्यों एक्स्ट्रा स्पेस देना किसी ऐसी चीज को. बट नॉनदरलेस माय पॉइंट राइट नाउ इज दिस, आर यू टीम यस ब्रिंग द ओल्ड थिंग्स बैक, जिस चीज का जो काम था उसे उसके लिए यूज करो, और आर यू समवन हु फील्स कि नहीं यार फ्यूचर आगे बढ़ रहा है तो जो नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही है हमें उनको मौका देना चाहिए दैन गोइंग बैक टू द ओल्डर थिंग्स, बिकॉज द न्यूअर थिंग्स आर बींग मेड टू मेक आर लाइफ सिंपलर, इजियर. विच टीम आर यू? आर यू टीम रेट्रो और आर यू टीम आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड, टीम फ्यूचर? लेट मी नो ऑन आवर व्हाट्सएप 054-309-1062, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो 800-1062 पे.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड, द बिग जिल,
3: ऑल माय फेवरेट म्यूजिक इन वन स्पॉट,
2: वीकडेज 9 PM टू 12 AM ऑन बिग 106.2, brought to you by insurancemarket.ae. What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze, and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Al Mayrid, Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network. Listen to her every day.
4: Mugambo, khush hua.
5: Ab har sham hum gaadi mein karenge karaoke.
2: Karaoke.
5: Track sunati, track pe hi gaana apne.
6: Ab hai judai ka mausam, do pal ka mehma.
5: Wah.
6: Kaise hame kana na na.
5: तूफान, ऐसा लग रहा है कि मेरे मेहमान भी भाग जाएंगे। नहीं नहीं पता चले इस चक्कर में मेरी क्लास लग जाए। मुझे लगता है द मेल वर्जन वैंडी ने ज्यादा अच्छा गाया।
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
7: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
8: बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा on the Big Mix on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
11: बहुत ज्यादा गर्मी यार, ह्यूमिडिटी भी बढ़ते हुए 63% तक पहुंच चुकी है। टेम्परेचर फिलहाल है 36, हाईज इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। लोज आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप 33 के। इट्स अ हॉट एंड ह्यूमिड डे।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

हर्षदीप कौर की आवाज कत्या करूं राइट हियर ऑन द बिग मिक्स. फिलहाल विद दैट वी हेडिंग इनटू द लास्ट आवर ऑफ द शो. चार बजने को आए हैं. आखिरी घंटे में हम खेलने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया सा गेम. इफ यू ऑलवेज लव्ड प्लेइंग नेमप्लेस एनिमल थिंग बचपन में, तो इसका एक बॉलीवुड वर्जन हम खेलते हैं इन द लास्ट आवर. मोर ऑन दैट टू फॉलो इन द लास्ट आवर वेरी वेरी सून. आई विल टेल यू कि इस गेम के रूल्स क्या है, कैसे खेलना है एंड ऑल ऑफ दैट. तो मेक श्योर यू आर लिसनिंग. दिस इज द बिग मिक्स. माय नेम इज ज़ोहरा. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून.

0: खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: करके।
1: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे। बिग टाइम चेक,
2: 4:07 हो चुके हैं। गुड आफ्टरनून।
3: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 101.2 The Beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays 9 PM to 12 AM on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Missed your morning buzz?
2: उठा ले रे देवा। ये सुनो, इस वक्त जब मैं लिंक्डइन पे जाऊंगा और मुझे रौनक का सीवी मिलेगा वहाँ पर, तो इस सीवी में सच बताओ, हैंड ऑन हार्ट, कितना झूठ बोला है?
3: हैंड ऑन हार्ट 5 to 7%
2: ऑनेस्टी के फुल मार्क्स रौनक को। एंड व्हाट इज द वन सेक्शन इन द रेज्यूमे और सीवी जहाँ पर लोग ज्यादा लिबर्टी लेते हैं कि यार यहाँ पे मैं थोड़ा सा फेंक दूं ना तो भी चलेगा, क्या कहते हैं?
3: हाँ, थोड़ा बहुत तो आपको लिखना ही पड़ता है, बिकॉज यू वांट टू मूव अहेड। जिस पोजीशन के लिए आप देख रहे हो वो प्रेजेंट पोजीशन से थोड़ी अबव है, तो उसके लिए, उसको मैच करने के लिए थोड़ा बहुत आपको लिखना ही पड़ता है।
2: हाँ, 10 चीजें अगर उन्होंने मांगी हैं आपके पास, 8 चीजें देने के लिए, तो आपने कहा चलो 2 भी मैं डाल देता हूं अपने मन से, बाद में सीख लूंगा।
3: ऑन द जॉब ट्रेनिंग पार्ट।
2: या मतलब लोग तो बहुत बंडल मारते हैं, आप तो सिर्फ 5-7% की बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप मुझे बता रहे हो और थोड़ा ज्यादा ही होगा, अगर मैं ढूंढूंगा तो थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा मेरे को उसके अंदर। एसी में बेसवानो जूस पीवानो मजा नहीं, लाइफ रानी तो पप्पा नहीं।
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है,
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
6: 36 डिग्री सेल्सियस बाहर, ह्यूमिडिटी 64% पे, हाइज आज एक्सपेक्टेड ज्यादा नहीं है, लोज जाएंगे आज सिर्फ 33 तक, सो इट्स गोइंग टू बी ऑल इन ऑल हॉट एंड ह्यूमिड, इट इज सनी एट द मोमेंट।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Yes, that's right. 4:17 ho chuke hain. Zohra ke saath hop right here on The Big Mix. I keep you company until 5. Filhaal, vakt aa chuka hai to play Name, Place, Movie, Thing.
2: Are you ready for this?
0: Name, Place, Movie, Thing.
2: Yeah.
1: वेरी वेरी सिंपल गेम. बचपन में हम सब ने खेला है नेम प्लेस एनिमल थिंग. तो मैंने बना दिया इसका बॉलीवुड वर्जन. विद मी ऑन द फोन लाइन इज डैनी. इज दिस डैनी रिंजोगपा? बस हंसना ही है या आप बोलोगे भी? डैनी आपका पूरा नाम क्या है?
3: डैनी कोचेरो, दैट्स माय नेम.
1: डैनी इज योर नेम? आई थॉट डैनी वाज लाइक अ निकनेम. प्यार से आपको लोग बुलाते हैं?
3: It's my official name, Danny.
1: Wow, you have such a cool name, Danny.
3: Yeah.
1: उसको ऐसे accent
3: में बोल. It's a malish name.
1: It's a malish name, sure, but I think that's what sets you apart. It sounds very cool.
3: Exactly. Yes.
1: And
3: yes.
1: I feel like the moment you say, yeah, you know, talk to Danny about it, people would get scared. अरे यार नहीं, Danny से नहीं बात करनी. ऐसे लग रहा है हंस हंस के मतलब गोलियां चला देती हैं. चलो यार Danny, what do you do?
3: I'm a trainer. I teach people about health and safety, how to be safe at their workplace.
1: It goes with your personality. You know, a name like that has to have something unique. You can't be just some regular person. Aise lag hi raha tha kuch alag hatke karti hongi aap. But nice to talk to you, Danny. Yeah. Chalo, aap train karti hain logon ko. Main aapka test karne wali hoon Bollywood knowledge. ठीक है, लेट्स सी. आपने ऑफ एयर तो मुझे अपना डेमो दे दिया था. लुक्स लाइक यू विल बी एबल टू एस दिस गेम. सो लेट्स स्टार्ट. नेम प्लेस मूवी थिंग इज द नेम ऑफ द गेम. ठीक है, वेरी सिंपल. आई विल गिव यू वन लेटर. उस लेटर से आपको चारों कैटेगरीज बतानी है इन 5 seconds ईच. कूल?
3: I'll try. Yeah, cool. I'll try.
1: Yes, let's go, Danny. I will start with an easy letter for you. चलो, we'll play 2 rounds. एक easy letter से start करेंगे, फिर थोड़ा difficult, okay?
3: Okay.
1: चलो, द फर्स्ट लेटर दैट आई एम गिविंग यू इज द लेटर ए. ए से आपको मुझे बताना है बॉलीवुड सेलिब्रिटी नेम. गो.
3: अनिल कपूर.
1: वेरी गुड. ए से बताओ मूवी का नाम.
3: अंदाज.
1: वेरी गुड. ए से बताओ प्लेस.
3: प्लेस आंध्र प्रदेश.
1: ए से अब बताओ थिंग. इससे हवा आती है, गर्मियों में बहुत काम आता है.
3: Oh my God.
1: AC, air conditioner बोल देते.
3: Oh yeah.
1: This game seems like it's gonna be very easy, लेकिन timer की आवाज सुन के इंसान सब भूल जाता है. चलो, we'll play one more round with you. I want you to give all 4 categories, okay? I'm giving you the letter R. R, ठीक है?
3: R.
1: R से आपको बताना है Bollywood celebrity name. Go.
3: रानी मुखर्जी.
1: Very good. R से movie. रोजा, आर राजकुमार. अरे यार, ओके. चलो, आर से बताओ प्लेस.
3: प्लेस राजस्थान.
1: वेरी गुड. आर से बताओ थिंग. रुहाफ्ता. ओह माय गॉड डैनी, ब्रांड के नाम ले लेते हैं. चलो, ड्रिंक जो सामने नजर आ रहा है बोल देंगे. यार डैनी, यू डिडंट गिव मी ऑल 4 आंसर्स, बट यू डेफिनेटली मेड मी क्रैक अप. यू आर अ लाइट. थैंक
3: यू.
1: इट वाज सो फन प्लेइंग विद यू डैनी. होपफुली अगली बार जब आपसे खेलूं आप मुझे चारों जवाब दे पाएंगी. तब तक थोड़ा रूबजा पी के आना. Have a great day, Danny. Bye.
3: Okay, you too. Thank you. Bye
1: bye. यार ये लगता बहुत इजी है, I'm telling you, बचपन में खेलने में, because we used to have a pen and a paper, you know, लिख कर इतना आसान लगता था, but mentally जब ऐसे याद करके बोलना पड़े वो भी 5 सेकंड के अंदर अंदर, it is not that easy. But if you think you can ace it, all you've got to do is call me 800-1062 पे. I play this game every day, इस last hour में. This is name, place, movie, thing.

0: खाने
1: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
2: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
3: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
4: मैदान सिंह के खजाने काट रहे, जरा जोर से बोले बे।
5: Get ready for a treasure hunt like no other. Indra Kumar, Bhushan Kumar and Ashok Thakeria invite you to the biggest family entertainer of the year, Dhamaal 4. Starring Ajay Devgan, Ritesh Deshmukh, Arshad Varsi and Javed Jafri. Directed by Indra Kumar. Releasing on 10th July. Distributed by Al Nisar Cinema Film. Powered by Big 106.2.
6: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
7: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
8: बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ।
9: ये है Zohra on the Big Mix. On Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: धुरंधर द रिवेंज से हम प्यार करने वाले ऑन द बिग मिक्स। और अगर आपके घर में भी आपके प्यार करने वाले हैं जो आपको कह रहे हैं यार कहीं जाना है, कुछ करना है, ये गर्मियों से बहुत बोर हो गया, देन आई हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर यू।
1: द बिग मिक्स विद ज़ोहरा ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: यस दैट्स राइट, इससे बढ़िया सॉल्यूशन होगा ही नहीं। दिस समर बिग 106.2 इज गिविंग यू द अल्टीमेट स्टेके ऑन बिग समर सरप्राइजेस। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्केचर्स, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सो, सलमायरिद, रासल खेमा में, जहां पे आपको जाकर अपनी फैमिली के साथ है ना इतना मजा आएगा, मतलब यू विल बी कंफ्यूज्ड कि मैं क्या करूं, पहले पूल के पास जाऊं वहां पे चिल कर लूं थोड़ा, पहले बढ़िया खाना खा लूं, यू नो व्हाट डू आई डू, क्रिएट कंटेंट फॉर इंस्टाग्राम, व्हाट डू आई डू। दिस इज द परफेक्ट एस्केप फॉर यू दिस समर। यार अपनी फैमिली के साथ जाओ, एंड ऑल्सो यू हैव अ चांस ऑफ विनिंग सो मेनी अदर थिंग्स राइट। डेली प्राइजेस वर्थ 500 dirhams इंक्लूडिंग मूवी टिकट्स एंड F&B वाउचर्स एवरी सिंगल डे। ऑल यू गॉट टू डू टू पार्टिसिपेट इज ट्यून इन टू द बिग ब्रेकफास्ट एंड द बिग थ्रिल। सुनना है, टाइप करके भेजना है BSS स्पेस अपना नाम टू आवर व्हाट्सएप व्हिच इज 0543091062, दैट 0543091062। BSS स्पेस अपना नाम भेज दीजिए हमें जल्दी से। बिग समर सरप्राइजेस प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्केचर्स, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सो, सलमायरिद, रासल खेमा, ओनली ऑन बिग 106.2।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। मिस्ड योर मॉर्निंग बस?
2: उठा ले रे बाबा।
1: ये सुनो,
3: इस वक्त जब मैं लिंक्डइन पे जाऊंगा और मुझे रौनक का CV मिलेगा वहाँ पर, तो इस CV में सच बताओ, हैंड ऑन हार्ट, कितना झूठ बोला है?
4: हैंड ऑन हार्ट 5-7%।
3: 5-7% ऑनेस्टी के फुल मार्क्स रौनक को। एंड व्हाट आर द वन सेक्शन इन द रेज्यूमे और CV जहाँ पर लोग ज्यादा लिबर्टी लेते हैं कि यार यहाँ पे मैं थोड़ा सा फेंक दूं ना तो भी चलेगा, क्या कहते हैं?
4: हाँ, थोड़ा बहुत तो आपको लिखना ही पड़ता है, बिकॉज यू वांट टू मूव अहेड। जिस पोजीशन के लिए आप देख रहे हो वो प्रेजेंट पोजीशन से थोड़ी अबव है, तो उसके लिए उसको मैच करने के लिए थोड़ा बहुत आपको लिखना ही पड़ता है।
3: हाँ, 10 चीजें अगर उन्होंने मांगी हैं आपके पास, 8 चीजें देने के लिए, तो आपने कहा चलो 2 भी मैं डाल देता हूँ अपने मन से, बाद में सीख लूंगा।
4: ऑन द जॉब ट्रेनिंग पार्ट।
3: या मतलब, और लोग तो बहुत बंडल मारते हैं, आप तो सिर्फ 5-7% की बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप मुझे बता रहे हो और थोड़ा ज्यादा ही होगा, अगर मैं ढूंढूंगा तो थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा मेरे को उसके अंदर। AC में बैसवानो, जूस पीवानो, मजा नहीं लाइफ, रानी तो पप्पी।
1: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM to 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।
0: ट्रैफिक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यार, E311 लेकर अगर आप जा रहे हैं शारजा की तरफ, ये ट्रैफिक शुरू हो चुका है वर्का 2 से गोइंग ऑल द वे अंटिल S12 शारजा रिंग रोड। हैवी ट्रैफिक मिलेगा आपको वहां पे, एटलीस्ट अबाउट अ 22-मिनट डिले ऑन दैट रोड इज एक्सपेक्टेड। E11 इतिहाद स्ट्रीट हेडिंग टूवर्ड्स नाहदा 1D3 की तरफ जा रहे हैं, वहां पे भी बंपर टू बंपर ट्रैफिक, 12-15 मिनट का डिले। अगर आप है D75 शेख राशिद रोड पे, वहां पे भी मिल जाएगा आपको वेरी हैवी ट्रैफिक फॉर एटलीस्ट अबाउट 8-9 मिनट्स के फाफ स्ट्रीट की तरफ, स्पेशली इफ यू हेडेड, तो वहां पे ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। E44 रासल खोर रोड लाइट से मॉडरेट ट्रैफिक अराउंड दुबई क्रीक टावर, उसके अलावा एवरीथिंग लुक्स प्रीटी मच ओकेश। एनी अदर अपडेट यू कैन लेट अस नो ऑन आवर व्हाट्सएप 0543091062।
1: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2।
5: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
6: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
1: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae।

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से।
1: Discover the freedom plan that suits you best. Freedom. Your choice, your rules. Visit eand.ae to learn more. T's and C's apply. eand. Go for more.
2: Big 106.2.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस
1: ए मामू
0: सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, winks, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. This is The Big Thrill. I'm Mansi. Tuesday ki sham hai. While you're heading home, all set to keep you company until 9. Bahut sari gappe shappe marni hai. Jo hai, rant sessions hamare yahan chalte hain. Also, one thing that you and I absolutely love doing is अच्छा खाना खाना, और गाना अच्छा ना भी हो, हमें गाने का शौक है. तो आप और मैं हर शाम अब से गाएंगे गाने. इट्स टाइम फॉर कैरियोके. गाड़ी में बैठे बैठे कैरियोके कॉन्सर्ट इन जस्ट अ बिट. वंस अगेन आई एम लुकिंग फॉर माय कैरियोके क्वीन, और आई शुड से कैरियोके क्वीन और किंग. कैसे आप बन सकते हैं ये बताती हूँ. ऑल्सो द समर सरप्राइजेस, योर चांस टू विन अ फैमिली स्टेकेशन, सारी बातें होंगी. बट फिलहाल किक स्टार्टिंग द शो विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:07।

0: Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, this is the Big Thrill. Mansi, din thrilling ho ya na ho, shaam badi hoti hai kyunki aap ghar ja rahe ho, you're done with the day and ghar jaate jaate traffic jam mein har shaam aap aur main karte hain jam with the karaoke.
1: Karaoke.
2: You know, हम सब अपना टैलेंट छुपा के रखते हैं. मुझमें इतना टैलेंट है कि लोगों को दिख ही नहीं पा रहा है. आप में भी बहुत टैलेंट है जो स्टेयरिंग के पीछे छुपा है. अच्छा खाना, अच्छा गाना, ये दो चीजें हैं जिसपे अस देसीज वी बॉन्ड. अच्छा खाना ऑफकोर्स आपकी बीवी घर जाके बनाएगी, अच्छा गाना यहाँ पे आप मुझे सुनाएंगे. इट्स टाइम फॉर द कारियोके. इफ यू लव कारियोके, दिस इज इट. व्हाइल पीपल आर स्टक ऑन द शेख मोहम्मद बिन जायद, आप उन्हें एंटरटेन करेंगे अपनी मधुर आवाज में. वेल, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस गाना.

ये है आशाम आपका कारियोकी ट्रैक। अगर आपने गेस कर लिया है तो 800-1062 इज द नंबर टू डायल। आप मैसेज भी कर सकते हैं कारियोकी 0543091062 पे। सफर लंबा हो या छोटा, लाइंस ऑफ हो, सुर लगे या ना लगे, दिस कैरियोकी इज गोना मेक यू वेरी वेरी हैप्पी। जहां यू नो गाड़ी में बनती है स्टेज एंड ट्रैफिक जाम बनता है हमारा ऑडियंस, तो चलो माइक थामो और मुझे बताओ कि आपने ये गाना पहचान लिया है, कौन सा ट्रैक है। तो बस 800-1062 इज द नंबर डायल। लेट मी सी आशाम कौन बनता है, कैरियोकी किंग या फिर क्वीन। राइट ऑन बिग 106.2, कीपिंग यू कंपनी। आई एम मानसी, दिस इज द बिग थ्रिल।

0: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: A car rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
3: Ready, throw! Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Order two or more eligible items for 25 dirhams each and receive one collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Order now.
4: What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze, and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Al Mayrid, Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
5: Patchy traffic at the moment, if you're around the Alkuz industrial area, जिस area से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं Alkuz अभी तक गई नहीं हूँ अपने license के बाद, बहुत खतरनाक area to drive. The heavy traffic near Manara as well, traffic trailing a bit slow than the usual. If you're on the Sheikh Mohammed bin Zayed, फिलहाल दिखा रहा है 45 minute delay. There's heavy traffic DIFC business bay Sheikh Zayed, फिलहाल it is a 33 minute delay. Anything else you'd like to report, मुझे बताइए 800-1062 पर.
4: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
6: साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
4: Big 106.2.

0: ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, और शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: बिग 106.2

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: मुझे नहीं पता था यहाँ पे इंडियन आइडल के ऑडिशंस की तरह लाइन लग जाएगी, इतने सारे कारियों के किंग और क्वीन हैं। तो वाइल आप कार में हैं, आपको एंटरटेन करेंगे अच्छे अच्छे सिंगर्स एंड 18वें सुर को लगाने वाले सिंगर्स से आपको मिलवाएंगे। फिलहाल कार से याद आया, अगर गाड़ी रेंट करनी है एंड यू वरीड कि कार रेंटल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, देन आई हैव गॉट द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर यू। selfdrive.ae has the most affordable car rental in the UAE right now, starting from just 899 dirhams a month. बिल्कुल सही सुना आपने, 899 dirhams a month. At this price, paying more just doesn't make sense. कोई ownership नहीं, कोई long-term commitment नहीं, कोई stress नहीं. Just pick your car and drive. That's it. Look for selfdrive.ae or download the app now. Self Drive, your car, your price, your way.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हांजी, this is the big thrill. It's time for karaoke. सफर में अकेले क्यों सफर करो, अपनी आवाज से लोगों को भी सफर कराओ. नहीं, बट अभी ना संजय का मुझे फोन आया है. आई थिंक ही इज अ फैंटास्टिक सिंगर, क्योंकि इन्होंने कहा थोड़ा बहुत गा लेता हूँ. तो मतलब हर पार्टी में संजय आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम सब बोलते होंगे, संजय आप कुछ सुना दो यार, है ना?
2: बिल्कुल नहीं भाई, बस कर, तू रहने दे.
1: मुझे लग तो नहीं रहा, जितने कॉन्फिडेंस है आपने मुझे कॉल किया था ना.
2: जो ट्यून आपने बजाई तो गाना बहुत ही दिल के करीब वाला था.
1: दिल के करीब वाला? अच्छा, किसी को डेडिकेट किया आपने गाना?
2: ऐसा कोई नहीं, किसी को डेडिकेट नहीं किया, लेकिन बहुत कहते हैं बहुत प्यारा गीत गाना है तो बहुत पसंद है.
1: तो आप कैरियोके करते हो, गाने वाने गाते हो? आई थिंक हर देसी बंदा गाता है यार.
2: मैं नहीं करता.
1: तो ये आपने क्यों सोचा कि यहीं पे मेरे साथ डेब्यू करें अपना? मैं कह रही हूँ ना, शेख जात पे अकेले मत करो, हमारे साथ सब सफर करेंगे. फिलहाल आई डोंट बिलीव यू, जितने भी अच्छे सिंगर्स हैं ना वो हमेशा ऐसे कहते हैं कि यू नो आई डोंट सिंग. सो आई हैव हाई होप्स संजय. तो ये आपका कैरियोके ट्रैक है. बस कोशिश करना कि लोग जो है स्टेशन बंद ना करते, वरना मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी. बस उतनी कोशिश कर लेना, ठीक है?
2: बिल्कुल.

0: रुको रुको अभी 3 सेकंड है।
1: छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता।
0: ये जिसके लिए याद में आप गा रहे हो उसको सुनाया था कभी?
1: नहीं, किसी की याद नहीं।
0: ऐसा हो ही नहीं सकता।
1: 90s का सॉन्ग है तो
0: 90s की ही कोई मोहब्बत जो छुपाई हुई है वो याद आ गई होगी आपको। ऐसा तो है, आप तो छुपा रहे हो। वैसे इतना बुरा नहीं गाया आपने, अगर आप कह रहे हो कि आपने आज से पहले गाया नहीं है, नॉट बैड। थोड़ा सुर जो है वो 18वां लग गया था, लेकिन आपने गाना सही पकड़ा है।
1: थैंक यू।
0: नहीं, आवाज आपकी काफी अच्छी है, थोड़ा बस ये जो 18वें सुर से आप 7वें में पहुंच जाओ ना तो काम एकदम सही हो जाएगा। बट यू नो व्हाट, यही तो मजा है कैरियोके का।
1: बिल्कुल।
0: मैंने जब सबसे पहले अपने घर कैरियोके खरीदा था, मैंने गाना गाना शुरू किया, आई हैड फ्रेंड्स ओवर, एक ने पानी जो है पीते पीते गिरा दिया। तब मुझे समझ में आया कि भाई मैं कैरियोके क्वीन हूँ। मतलब लोग जो है वो दिए जला देते थे, ग्लास तोड़ देते थे, मैं लोगों के पानी गिरवा देती हूँ। बट थैंक यू संजय, एंड लेट्स सी के डू वी फाइंड एनी अदर कैरियोके किंग और क्वीन, अदरवाइज मेरे लिए तो आप ही हैं जिन्होंने अपनी 90s की मोहब्बत को याद करते हुए आज शाम ये इतना अच्छा नजराना पेश किया। संजय, छुपाना भी नहीं आता, लिखे थे लव लेटर उसे।
1: तो आप ये गाना बजा दे।
0: सर, बाकियों का दिल नहीं टूटा है और लोग निकल चुके हैं 90s के जमाने से, 2026 चल रहा है, यहाँ पे वो वाला चलता है, हुकअप कर लेना, ले ले नंबर मेला, वो वाला जमाना चला गया, छुपाने वाला हुकअप वाला नंबर आ गया है। चलो जी, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग संजय, थैंक यू सो मच।
1: यू टू, थैंक यू।
0: दिस इज द कैरियोकी। इफ यू थिंक कि आप ये गाना संजय से बेहतर गा सकते हैं, मेरी कैरियोकी मीटर में आपके पॉइंट ज्यादा आ सकते हैं, तो फटाफट कॉल करो 800-1062 पर। कैरियोकी

0: ठीक है माम, तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता।
1: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: घमासान मुकाबला हो रहा है, फोन लाइंस ऐसे बस कर रही हैं जैसे कि बस सारे सोनू निगम, उदित नारायण कुमार, सानू यहीं पर हैं। एंड अभी आनंद जी आए हैं, कह रहे हैं कि संजय से तो मैं बहुत अच्छा गा सकता हूँ, है ना आनंद?
2: ऐसे नहीं बोला,
1: मतलब इनडायरेक्टली तो वही मतलब था ना।
2: कोशिश एक आशा है, बाकी पब्लिक को पसंद है तो व्हाई नॉट।
1: बस लोगों के एयर बैग ना खुल जाए इतनी कोशिश करना। आनंद जी आप गाते हैं नहीं गाते हैं?
2: आई एम अ बाथरूम सिंगर आई सेड।
1: अरे वेरी नाइस, इतनी कोशिश कर लेना कि मैं यहाँ बैठी रहूँ, यहाँ से मेरी कुर्सी ना हिल जाए।
2: आई ट्राई माय बेस्ट।
1: नहीं है, कहीं है, आप सरकास्टिक वे में तो नहीं बोल रहे हो कि तू निकल यहाँ से, बस हो गया तेरा?
2: नहीं नहीं नहीं नहीं मंथी बिफोर वी स्टार्ट ना, आई हैड आई वुड यू नो आई थिंक इट वाज 7 इयर्स बैक आई हैड मेट पर्सनली एंड यू हैड गिवन मी द वाउचर फॉर सचिन तेंदुलकर मीटिंग।
1: मुझे खुद को याद नहीं, आप सचिन तेंदुलकर से मिलके आए थे, मैंने आपको वाउचर दिया था। कितनी दानवीर करण हूँ मैं, खुद नहीं मिली आज तक सचिन तेंदुलकर से। बट फिलहाल तैयार हो आप कार्योकि करने के लिए?
2: यस।
1: चलो जी, आए हैं संजय को मुकाबला देने के लिए। एंड वी हैव गॉट अनदर कैरियोकी किंग दिस इवनिंग।
0: कैरियोकी

0: चाहता, मुझे तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता।
1: ओ हो हो हो, दिल का दर्द सीधा मेरे कानों तक। बहुत अच्छा गाया सर आपने, बहुत अच्छा गाया। अब ये गाना ही ऐसा है ना, इसमें दर्द बाहर आ जाता है। अब मैंने संजय से पूछा था, उन्होंने तो मना कर दिया कि ऐसी कोई 90s की छुपी हुई मोहब्बत नहीं थी। आनंद आपकी थी?
0: काफी थी
1: बट
0: इट वाज ऑल वन साइडेड।
1: अरे अरे अरे, मतलब ये 90s के रेड फ्लैग थे।
0: yes.
1: तो किसी से शादी की या फिर शादी अरेंज मैरिज कर ली?
0: नहीं, इट वाज अरेंज मैरिज।
1: ये देखो, तो कौन सी एक याद आती है जब इतनी सारी थी तो? पुराने दिन पुराने दर्द, बट नॉट बैड एट ऑल। नाउ आई गोना लीव इट टू द ऑडियंस, ओके, जो इस वक्त गाड़ी में हमें सुन रही है, संजय या फिर आनंद, किसका सुर जो है वो ज्यादा बेटर लगा? हिले तो दोनों के सुर थे थोड़े थोड़े, बट हु डू यू थिंक इज द कैरियोके किंग और क्वीन? यू कैन सेंड मी अ व्हाट्सएप 0543091062 पे। बट आनंद, पता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो लोग जो बिना हिचकिचाए, यू नो, बिंदास होके गाते हैं।
0: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू आनंद फॉर गिविंग अस सो मच आनंद दिस इवनिंग। बाय।
0: प्लेजर टॉकिंग टू यू मानसी।
1: सेम हियर, यू हैव अ ग्रेट ड्राइव बैक होम। बाय।
0: टेक केयर। बाय। कैरियोके

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Hanji, this is the Big Thrill of Mansi. Sabse pehle kaam ki baat. Free family staycation. Agar aap jeetna chahte hain, register karna zaruri hai for the big summer surprises. BSS. Apna naam likhe bhejna hai 0543091062 पे. वैसे अगर डायरेक्ट एंट्री चाहिए देन हेड टू आवर इंस्टाग्राम पेज. देयर इज अ पोस्ट. फॉलो द रूल्स. आपको वहां भी मौका मिलेगा टू विन योरसेल्फ दिस अमेजिंग फैमिली स्टेशन. एंड इंस्टा हैंडल इज 106.2 बिग एफएम. सो गो एंड चेक इट आउट. फिलहाल दिस आर ऑफ द शो. वी प्ले दिस फन गेम. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज. 3 चीजें आपने बतानी होती हैं 5 सेकंड के अंदर. साउंड्स लाइक अ लड्डू गेम बट जलेबी की तरह उलझा उलझा सा है. अगर गाड़ी में बैठे बैठे लग रहा है यू कैन क्रैक द 5 सेकंड रूल. गिव मी अ कॉल 800-1062 पर. माहौल तो है नहीं लेकिन इंडिया के मानसून को याद करते हो.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 2:12।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, this is the Big Thrill, Mansi. अभी अभी आपने सुना टिप टिप बरसा पानी. रवीना यहाँ पे आ चुकी है साक्षात. हाय रवीना.
3: हाय.
2: यार गाना बजा और रवीना का कॉल आ गया. मैं गलत टाइम पे गलत चीजें मांगती हूँ. अभी मुझे लॉटरी मांगनी चाहिए थी. बट रवीना, आई लव दिस नेम.
3: I love my name too.
2: And I love Raveena Tandon. I think she was so stunning. She still is. There is some spark usme. You know, you can't compare her to the actresses in the 90s. There's something very, very different about Raveena Tandon.
3: Yeah, agreed.
2: So, kaun fan tha Raveena ka? Mama ke papa? Papa hi honge. Papa hi
3: honge. Meri didi actually. But it was my sister.
2: So, have you recreated this gana ever in Barish? येलो साड़ी पहन के टन टन
3: नन नन नन नन नन नन नो नहीं इतना ऐसे फिगर विगर होता तो शायद कर भी लेती.
2: उससे फिगर की फिकर नहीं करनी चाहिए, बस जो दिल आए वो करना चाहिए. इतना अच्छा नाम है रवीना टंडन का, ये गाना बनता है जब भी बारिश आए. यू हैव टू रिक्रिएट इट. फिलहाल रवीना, व्हाट डू यू डू?
3: सो आई वर्क, आई एम अ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बेसिकली.
2: मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, वेरी वेरी नाइस. आई लव द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. I think they are one of the most creative departments that you have.
3: Yeah.
2: And also ek aisa department jisko kabhi bhi credit nahi milta hai.
3: Haan, wo bhi baat sahi
2: hai na. Bilkul credit nahi milta
3: hai. Kuch galat ho jaye wo bhi unhi pe blame aata hai.
2: Haan, but kuch sahi ho to us department ko kabhi bhi credit nahi diya jata hai. Filhal we'll play this fun game. It's called the 5-second rule. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. Teen cheeze batani hai 5 second ke andar.
1: 5-second rule.
4: Oh yeah.
2: Because your name is Raveena, we'll start with 3 Raveena Tandon ki movies.
3: Oh no.
2: Oh no. Ori.
3: No.
2: Hi Raveena. Kya hua ye? 3 things that are green in color you can eat. टाइम खत्म हो गया. गिलकी, टिंडा, लौकी, पालक, मेथी, कितनी सारी हैं. 3 things that you pick from a hotel room.3 red flags for you in a relationship, Raveena. Akshay Kumar. टाइम खत्म हो गया बहन. 5 सेकंड के अंदर फटाफट खेलने वाला गेम है.
1: 5 second rule.
4: Oh yeah.
2: हाँ जी रवीना जी, मैं आपका रिपोर्ट कार्ड दूं नहीं दूं आपको?
3: पास करते थे.
2: एक भी जवाब 5 सेकंड के अंदर आपने दिया नहीं. बार इट वॉज सो मच फन टॉकिंग टू यू रवीना. I hope you enjoyed the game.
3: Thank you. It was fun.
2: Have a great evening and thank you so much for participating.
3: Thank you.
2: Bye. Yeah, 5 second rule. Maine kaha na, it sounds very easy, but jab aap yahan khelte ho na, tab samajh mein aata hai ki itna easy hai nahi. If you want to try, give me a call 800-1-0-6-2-5.

0: of Bollywood.
1: Summer is here and Big Ticket is turning up the heat.
2: Win a guaranteed 20 million dirham grand prize.
1: Five more winners will take up 100,000 dirhams.
2: Play Big Spin live on the show and win up to 1 million dirhams.
1: Plus four weekly e-draw winners.
2: Turn your summer into millions.
1: Buy now at bigticket.ae.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
4: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
5: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
4: अलराज कहाँ है अलराज?
5: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
4: चलो चले अलराज।
6: इंश्योरेंस मार्केट डॉट ए 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
7: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
8: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
9: Missed your morning buzz?
10: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
9: ये सुनो,
11: इस वक्त जब मैं लिंक्डइन पे जाऊंगा और मुझे रौनक का सीवी मिलेगा वहाँ पर, तो इस सीवी में सच बताओ, हैंड ऑन हार्ट, कितना झूठ बोला है?
12: हैंड ऑन हार्ट 5-7%।
11: 5-7% ऑनेस्टी के फुल मार्क्स रौनक को। And what are the one section in the resume or CV जहाँ पर लोग ज्यादा लिबर्टी लेते हैं कि यार यहाँ पे मैं थोड़ा सा फेंक दूं ना तो भी चलेगा, क्या कहते हैं?
12: हाँ, थोड़ा बहुत तो आपको लिखना ही पड़ता है, बिकॉज यू वांट टू मूव अहेड। जिस पोजीशन के लिए आप देख रहे हो वो प्रेजेंट पोजीशन से थोड़ी अबव है, तो उसके लिए उसको मैच करने के लिए थोड़ा बहुत आपको लिखना ही पड़ता है।
11: हाँ, 10 चीजें अगर उन्होंने मांगी हैं आपके पास, 8 चीजें देने के लिए, तो आपने कहा चलो 2 भी मैं डाल देता हूं अपने मन से, बाद में सीख लूंगा।
12: ऑन द जॉब ट्रेनिंग पार्ट।
11: या मतलब, और लोग तो बहुत बंडल मारते हैं, आप तो सिर्फ 5-7% की बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप मुझे बता रहे हो और थोड़ा ज्यादा ही होगा, अगर मैं ढूंढूंगा तो थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा मेरे को उसके अंदर। एसी में बेसवानो जूस पीवानो, मजा नहीं लाइफ, रानी तो पप्पा नहीं।
9: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM to 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद जेड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
13: लगता है बर्फ पड़ने वाली है,
14: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
9: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलराज, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
15: 35 degrees, लो जाना अराउंड 33, वेरी वेरी ह्यूमिड फिलहाल, ह्यूमिडिटी है 73% पर।
9: अलराज ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलराज.me। बिग 106.2। ब्रदर।

0: मिलाने मिलाने और जमीन भाई पसारे बोल रही थी कि हाउस मां कि तू मुझे मिला नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कि प्यार का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: बिग 106.2

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: अब देखो क्या कोइंसिडेंस है, यहाँ मानसी बैठी और यहाँ पे भी मानसी आ गई। हाय मानसी।
2: हाय मानसी,
1: कितना अच्छा लगता है ना अपना ही नाम बार बार लेना। मैं चाहती हूँ लोग लें, बट आज हम दोनों ही लेंगे एक दूसरे का नाम।
2: जी मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे नाम और आपका नाम एक सेम है और मैं अपना ही नाम बोल रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा अटपटा भी लगा है।
1: क्यों अटपटा लग रहा है? मतलब देखो यार, बाय डिफॉल्ट अब नाम मानसी है तो बहुत सुंदर होगी तुम भी, है ना? मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, ये हमारा हाल टैलेंट हम में कूट कूट के भरा है। अब इसमें हमारी गलती नहीं है, हमारे नाम की गलती है। तो मानसी करती क्या?
2: मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ।
1: वेरी नाइस। तो हो रही है प्रमोशन वगैरह, बॉस खुश है?
2: हो रहा है, बट अभी थोड़ा सा स्लो है मार्केट के हिसाब से।
1: कोई बात नहीं, चल पड़ेगा। यू नो वक्त की एक खासियत है, वो इंसानों जैसा है, एक जैसा नहीं रहता है, हमेशा बदलता है। फिलहाल मानसी जी आपको खिलाते हैं 5 सेकंड रूल, मजेदार गेम है ये। क्या शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हो क्या?
2: मैं अभी गुरु जी के आश्रम में आई हूँ और वहाँ पे लकीली थोड़ा सा डिले हुआ है सत्संग, तो मुझे टाइम मिल गया।
1: ये देखो सत्संग से पहले 5 सेकंड रूल खेल रही है, ये पक्का मानसी है, ये 100% मानसी है। चलो जी आपको मिलेंगे 5 सेकंड, मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर।
0: 5 सेकंड रूल।
3: ओह यस।
1: क्विकली नेम 3 बॉबी देओल की मूवीज। अल्फा नाम था वो, अभी आई है पर टाइम जो है 5 सेकंड है तो फटाफट खेलना है।
2: देखो
1: फाइव सेकेंड, फटाफट। 3 things दैट यू फाइंड ओनली एट अ बीच। फटाफट। 3 चीजें जो आपको लोगों के बारे में अच्छी नहीं लगती।
2: कभी कभी रूड नेचर, कभी एंग्री होना और कभी किसी भी बात से नाराज होता है, हो जाते हैं। और कभी खाना,
1: ये देखो फटाफट, कभी खाना क्या
2: खाना नहीं खिलाते, कभी इनवाइट करते हैं।
1: 3 things that are yellow in color and you can eat.
2: Mango, orange, lemon.
1: ऑरेंज येलो कलर का होता है?
2: ऑरेंज
1: ऑरेंज वाह मां, मजा आ गया। ऑरेंज येलो कलर का होता है। 3 बॉलीवुड गाने जिनमें दिल आता है।
2: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है,
1: दिल आता है, दिल आता है। ये देखो ये पक्का मानसी है, ये सुनने वाले दिन तो हुई नहीं थी। मैं कह रही हूँ 3 गाने जिनमें दिल आता है, कह रही है हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: 5 second rule.
3: Oh yeah.
1: देखो गेम तो आपने अच्छा नहीं खेला लेकिन मजा बहुत आया आपसे बात करके, वो लोगों वाली बात ना बड़ी अच्छी थी। फिलहाल जाइए सत्संग में, मेरे लिए भी थोड़ी यू नो दुआ मांगिए, चैन मैन जो है वो उजड़े ना बना रहे, ठीक है? थैंक यू, बाय
2: बाय।
1: 5 second रूल, द ओनली रूल टू प्ले दिस गेम इज यू हैव टू गिव मी अ कॉल 800-1062 पर।
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों री, तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

0: The Bay Trail with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, this is the Big Thrill of Mansi. And zindagi jeene ke liye weekend ka intezar karne ki zarurat nahi hai. Go out on dates, go out on dinners, and if you're looking for that perfect place, then discover for unique dining destinations, Paros, Nonya, Shamiana and TJ's, all of this as Taj JLT. If you enjoy stunning rooftop sunsets and great Mediterranean flavors, then head for these chic vibes at Paros. अगर आपको एशियन क्विजीन एंड डेलिकेसीज अच्छी लगती हैं विद सम ग्रेट वाइब्रेंट एम्बियंस देन नॉनिया इट इज एंड एक्सपीरियंस कीजिए ऑल डे डाइनिंग एट शामियाना एंड अ लाइवली सोशल सीन एट टीजेस सो मेक योर वीकेंड्स आल्सो मेमोरेबल विद द निसी ब्रांच एवरी फ्राइडे एट पारोस रेट्रो ब्रांच एवरी संडे एट नॉनिया एंड द पॉपुलर इवनिंग ब्रांच एट टीजेस सो ताज जेएलटी इट इज व्हेन आई कम बैक समथिंग वेरी वेरी एक्साइटिंग वेटिंग फॉर यू स्टे राइट हियर दिस इज बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. We'll be right back.

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: All right, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है. You want to beat the heat in style, chill by the pool, enjoy some great food and make memories with your entire family. That too, free, free, free. Then this is it. The last 5 minutes for you to register. अगर आपने अभी तक register नहीं किया है, WhatsApp करना है to win yourself this stunning staycation at this beautiful, beautiful property which is Rixos Almarid in Russell Khema. Big summer surprises it is. And WhatsApp करना है BSS अपना नाम 0543091062 पे. कृपया करके सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, कॉल नहीं करना है. एंड अ रैंडमाइजर इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स इज गोइंग टू चूज टू नेम्स जो यहां पे एक घमासान मुकाबला करेंगे. यस, इट्स गोइंग टू बी अ स्पेल बैटल.
1: पार्टिसिपेट इन द स्पेल बैटल कॉन्टेस्ट एंड विन अ फैमिली स्टेकेशन. Big summer surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almarid Ras Al Khaimah.
2: Whoever wins the spell battle, A, unka naam draw mein jayega for this family staycation, and B, Asham, they're walking away with open movie tickets courtesy of Walk Cinemas and F&B vouchers. So get set WhatsApping while you're at it. We've got Tanish Bakshi.

0: Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: A thrilling, exciting family staycation is waiting for you. It's time for the big summer surprises. Register karne ke liye, you just have to WhatsApp BSS, that is Big Summer Surprises. Apna naam to 0543091062. In fact, agar aap yahan nahi select ho paate hain, the randomizer is not picking your name. You can head to our Instagram page as well. And wahan bhi aapko direct entry milegi for the Big Summer Surprises. 106.2 Big FM it is. Right now, I have Kavita and Azhar. Good evening, guys.
2: Good evening.
1: How was your day, Azhar?
2: Alhamdulillah, I'm very good. How are you, Mansi?
1: Good. And Kavita, din mein kitni baar bola hi garmi?
3: Nahi bola kisi baar nahi hai office
2: mein. Nahi, matlab ha, office mein hi tha, fir drive karke ghar pe wapas aa gaya bas.
1: Very nice. Aapko nahi na bahar reel banani padti hai dhoop mein. Humse poocho. But when was the last time aap staycation pe gaye the, Azhar?
2: मैं गया ही नहीं हूँ स्टेकेशन.
1: आज तक लाइफ में नहीं गए हो?
2: मतलब घूमने गया हूँ बाहर दूसरी जगह, पर स्टेकेशन ऐसा यहाँ पे दुबई पे मैंने किया नहीं अभी तक.
1: वेरी नाइस. अच्छी कंजूसी है ये. व्हाट अबाउट यू कविता?
3: इट्स बीन अ व्हाइल नाउ, काफी टाइम हो गया.
1: चलो जी, आई एम गिविंग द बोथ ऑफ यू अ चांस टू गो एंड एंजॉय सम ग्रेट फैमिली टाइम. द प्रॉपर्टी स्टनिंग. आशाम आपका शॉर्टलिस्ट होने का मौका है, बट हूएवर इज विनिंग दिस गेम इज वॉकिंग अवे विद ओपन मूवी टिकट्स एंड F&B वाउचर्स. वेरी वेरी सिंपल. इट्स कॉल्ड द स्पेल बैटल. आई विल गिव यू अ फ्यू words of course related to holiday, to staycation, to summers. Jisne sahi spelling batai wo jeet jayega. But participate karne ke liye you'll have to say Big Azhar, Big Kavita, and then I'll ask you to answer. If you don't follow the rules, you'll be disqualified. All right?
2: Done. Yes.
1: All the very best. Kiski spelling achhi thi? Bachcho ko kaun padhata hai? Kavita, aap padhate ho?
3: Main padhati hu.
1: Haan, to ye easy hone wala hai. What about you, Azhar?
2: स्पेलिंग अच्छी है, बच्चे को नहीं पढ़ा तो बच्चे भी बहुत छोटे.
1: अच्छा चलो, वी विल सी कौन है ब्राइटर स्टूडेंट आशाम इस क्लास का.
0: पार्टिसिपेट इन द स्पेल बैटल कॉन्टेस्ट एंड विन अ फैमिली स्टेकेशन. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirade Ras Khaimah.
1: All right, the first word is luggage.
2: Big Azhar.
1: Yes, Big
2: Azhar. Luggage.
1: Absolutely correct. 1 point to Azhar. The next word is cruising.
2: Big Azhar.
1: हाँ जी अजर.
2: CRUISING.
1: ओहो, उन्होंने पहले बोला है, माइन्यूट सेकंड का फर्क था कविता. फटाफट बोलना होता है. वैसे तीसरा पूछने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर फन आई'd लाइक टू आस्क. ट्रैकिंग. ये देखो, गुस्सा हो गया कविता. अजर
3: नहीं,
1: बता दो ट्रैकिंग की स्पेलिंग भी. अजहर.
2: TREKKING.
1: Absolutely correct. And इसी के साथ Azhar, you're walking away with open movie tickets and F&B vouchers. Plus, your name gets into the draw for the staycation. And Kavita, you still have time and you can participate again. Gussa to nahi ho na?
3: Not at all.
1: आजकल बहुत लोग मुझसे गुस्सा में एक और नहीं लिस्ट में ऐड करना चाहती. मुझे नींद नहीं
3: आएगी. नहीं, नहीं, नहीं, not at all. I have to meet you also, so not at all, yeah.
1: So cute. Thank you, Kavita.
3: Take care.
1: Have a great evening. Congratulations, Azhar. Bye.
2: Thank you so much, Mansi. Have a great evening.
1: Bye.
2: Thank you.
1: Agar aap bhi participate karna chahte hain, you have to register. And for that, you'll have to send me a WhatsApp, BSS. That is Big Summer Surprise. Apna naam to 0543091062.
0: Participate in the Spell Battle Contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirade Ras Al Khaimah. Big 106.2. Fast Track Song of the Hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. This is the Big Thrill, Mansi. And if you are a fellow single millennial, आपको introduce कराती हूँ एक और dating trend से जिसका नाम है Yap Trapping. अब Yap Trapping is a dating meme which has become very very popular these days. So it's a new official term for going on a first date with someone who literally will not stop talking about themselves, especially trapping you into a one side conversation in 2 hours. And before you say, oh Mansi, you're going on a date, you will definitely Yap Trap. I actually don't do that. I remember going on a date long back. Ab to guzar gaye woh zamane, to awkward sa silence tha aur mujhe bahut problem hai awkward silence se, but maine bola chalo theek hai, hame kya karna, khao aur ghar jao. So the guy said, why don't you talk, because you know aapka profession ye hai to aap baatein karo. Wow. मैंने उससे बोला कि भाई मेरा प्रोफेशन है बट यहाँ मैं डेट पे आई हूँ तो आप भी कुछ बातें करो. इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप किसी शेफ के साथ रेस्टोरेंट में जा रहे हो उससे बोलो कि भाई आप ही खाना बना लो क्योंकि आपका प्रोफेशन है. Yap Trapping इज डेफिनेटली समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट. सो आई एम नॉट डेफिनेटली द यापर काइंड्स, बट बहुत सारे लोग होते हैं, इवन फ्रेंड सर्कल में होते हैं, जो फोन करते हैं और सिर्फ अपनी बात करते जाते हैं. आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू आर लाइक it is very very irritating. So yeah, if you know a yapper, if you are a yapper yourself, then aap pe bahut sare memes ban rahe hain, but I think hamesha ek baar zindagi mein kisi ko sunna bhi chahiye. You should not just keep talking and talking and talking.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा।

0: बॉयज, मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, brought to you by selfdrive.ae. Early in the morning, The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2, brought to you by Zulekha Hospital and Henna Speedy Easy Hair Color.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
3: 34 डिग्रीज लो जाएगा अराउंड 33. वेरी वेरी ह्यूमिड. फिलहाल ह्यूमिडिटी है 79% पर.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2.

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: अच्छे गाने के साथ इफ यू एंजॉय गुड फूड फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस देन गेट फोर इनक्रेडिबल डाइनिंग एक्सपीरियंसेस अंडर वन रूफ एट ताज दुबई सोक इन ब्रेथटेकिंग दुबई स्काईलाइन व्यूज इन वाइब्रेंट नाइट लाइफ एट द ट्री हाउस इंडल्ज इन बोल्ड एशियन फ्लेवर्स एट मिस टेस एंड कंटेम्पररी इंडियन क्विजीन एट द बॉम्बे ब्रेसरी इन फैक्ट यू कैन कैच अप विद फ्रेंड्स एंजॉय योर फेवरेट बेवरेजेस एट द एलिक्वेंट एलिफेंट एंड डोंट मिस द आफ्टर डार्क ब्रंच एट मिस टेस व्हिच इज एवरी सैटरडे 7 to 10:30 बजे सो यार देयर समथिंग फॉर एवरीवन एट ताज दुबई डेफिनेटली गो एंड चेक देम आउट
0: बिग 106.2

0: Bollywood.
1: InsuresMarket.ie. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Every policy is a promise kept. InsuresMarket.ae.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by SelfDrive.ae.
2: हेलो बॉयज, मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए. एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स.
0: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: काला चश्मा तो नहीं, लेकिन चश्मा लग गया है और बहुत सॉलिड लग गया। मतलब मेरा चश्मा तो काफी टाइम से लगा हुआ है, बट मेरा नंबर बढ़ गया है। हाय, मेरी उम्र बढ़ रही है। फिलहाल यहाँ से मेरा जाने का टाइम, मैं आपसे मिलती हूँ अब कल। एंड नंबर बढ़ गया, इसका मतलब है कि मुझे और साफ दिखाई देगा, जो बहुत जरूरी है। यू नो, लाइफ में कई बार वी जस्ट इग्नोर थिंग्स, बट साफ देखना थ्रू थिंग्स, थ्रू सिचुएशंस, थ्रू पीपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद और विदाउट चश्मा। इस ज्ञान की बात के साथ आपको एक काम की बात बताती हूँ। अगर आप जीतना चाहते हैं मूवी टिकट्स, ऑफ कोर्स स्टेकेशन एंड लॉट मोर, देन हेड टू आवर इंस्टाग्राम पेज। इंस्टा हैंडल इज 106.2 बिग FM। वहां जाइए, वहां भी बहुत सारे प्राइजेस जीतने का मौका आपके पास, प्लस सम ब्रिलियंट फन कंटेंट। यू कैन ऑल्सो से हाई टू मी, आई एम मानसी टॉकिंग। आई विल बी टॉकिंग टू यू टुमारो 5 to 9 इज व्हेन आई कीप यू कंपनी, लीविंग यू विद वन ऑफ माय फेवरेट्स फ्रॉम धुरंधर 2। उसके बाद वी हैव द बिग चिल, सम वेरी चिल लॉन्ग ड्राइव, अनप्लग्ड काइंड ऑफ म्यूजिक। सो स्टे राइट हियर, आई विल सी यू टुमारो। गुड नाइट।

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, VIP सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।